0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. La fiat la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो।
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं
2: तो फिर किसने किया है सर? ये सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है।
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा निकाला ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पे क्या मेरा नाम लिखा है?
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता
1: ठीक बोल लो ना, वहीं आके बजाऊंगा
2: तुम्हें। आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए,
1: सबको लगा दूंगा लाइन में।
2: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी, स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं। सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
1: लेकिन
2: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है, नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटा।
5: हाय दिस इज अनुराधा पौडवाल।
6: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला।
7: दिस इज विनोद राठौर एंड वी आर कमिंग टू परफॉर्म इन योर सिटी दोहा कतार।
6: धूल से पर्दा कीजिए।
8: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
9: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Asaya Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369, an event by Rami Productions International.
10: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
11: Yes, Bebo.
10: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
11: Yes.
10: Catch kya hai?
11: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
10: I still can't believe it. No catch.
11: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
12: Who that? Zaheer!
13: Zaheer! Zaheer who?
12: Zaheer si baat hai, main hi hu, aur koi nahi.
13: Khat khat, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस ले।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, आपने भी दोस्तों बिल्कुल सही मैच करके एकदम सही फ्रीक्वेंसी कैच कर लिया। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरनून का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक एंड इट्स द वेरी सेम वही आपकी आफ्टरनून है। और आफ्टरनून हमेशा की तरह लेकर आई है आपके लिए।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट।
1: वेल, वेदर आज का ये कह रहा है दैट मैक्सिमम टेम्परेचर अब हो चुका है 41 डिग्री सेल्सियस। हालांकि मैं बहुत उम्मीद कर रही थी कि अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हमें नज़र आएगा, लेकिन आंकड़ों का तो ये कहना बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है कह रहा है। बट दिस वीकेंड माई फ्रेंड, मैं शाम के वक्त बाहर थी। पिछले हफ्ते में मैं जैसे कह रही थी कि नहीं यार, शाम के वक्त तो वेदर अच्छा हो ही गया है एंड ऑल दिस फलाना ढमकाना एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी भाई। एक इवेंट था बाहर, शाम के वक्त था एंड इट वाज सो ह्यूमिड। डिड यू आल्सो फील द सेम कि हाँ यार आफरीन, वीकेंड पर तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बताइए मुझे 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं ध्वनि मानुशाली और निखिल डिसूजा की आवाज में। गाना एंजॉय कीजिएगा।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ no stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
9: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
10: बार बार।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाज में ये गाना आपने सुना कपूर एंड सन से आपके साथ जुड़ गई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और जिस तरह से मैं यहाँ पर एक्चुअली काम करने आती हूँ कि भाई चलो सुबह में ज़बरदस्त वाले गाने सुनाएंगे, काम की बातें करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे और फिर आपकी सुबह को ना एकदम हल्के फुल्के मूड से ऐसे शुरू करेंगे, लेकिन इट समटाइम्स गोज दी अदर वे। मतलब मैं यहाँ पर आती हूँ, समटाइम आई एम स्टिल नॉट फ्रेश, नींद में रहती हूँ, एंड देन यहाँ पर आपके जब गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं ना, इट रियली फ्रेशन्स मी। जैसे यहाँ पर वॉइस मैसेज आ गया आज तो सुबह सुबह कुछ
2: good
1: ऐसा।
2: morning,
1: very good morning
2: from Robert D'Souza.
1: Okay.
2: आमची मुंबई।
1: क्या बात है, आमची मुंबई से रॉबर्ट डिसोजा की आवाज सुनकर मैं एकदम ऐसे फ्रेश हो गई। बट देन और थोड़ी सी नींद जो थी वो बची कुची का सर जो है इमरान की शायरी ने दूर कर दी यहाँ पर, जहाँ गुड मॉर्निंग कहते हुए उन्होंने कहा कि चलो आज हम आफरीन की डायरी से शायरी पेश करते हैं। और क्या शायरी कही है जो मैं यहाँ पे जरूर अर्ज करना चाहूंगी कि कानों में पड़े जो बोल कभी रू तलक उतर जाते हैं, बुझते हुए उम्मीद के दिए छुपके से सवर जाते हैं। क्या बात है। सफर तन्हाई का हो चाहे या भीड़ भारी हो रहे, हाँ जी ये रेडियो थामे रहता है खामोश भरी बाहे। वाओ, कोई दूर बैठा सुनता है, कोई पास बैठा मुस्कुराता है, ये रेडियो वाला दोस्त हमें खुद अपने जैसा पाता है। क्यों, हाउ डू यू इवन मैनेज डू दिस इमरान, दैट्स अ ब्यूटीफुल शायरी, थैंक यू सो मच। उसी के साथ यहाँ पर मेरे ख्याल से गणेश का मैसेज आया है गुड मॉर्निंग कहते हुए, एंड इफ यू आर वंडरिंग कि चलो हम भी भेज देते, 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर।
3: एक हो गए हम और तुम।
1: जुबिन नौटियाल शाशा तिरुपति की आवाज में अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची विद हॉट।

और जैसा ये उम्मीद तो है कि हमें वेदर थोड़ा सा बेहतर होगा आने वाले दिन में, हो जाएगा, होने तो वाला है, हमें पता है, बस अब क्या है ना, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है कि अब तो फटाफट से हो ही जाए। चलो ठीक है, ये जो खबर है मैं अगली जो सुना रही हूँ इससे शायद उम्मीद थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी कि अब लुसेल विंटर वंडरलैंड इज गोन कम बैक। नाउ इन दिस वर्ल्ड लिटरली हैज विंटर वंडरलैंड, सो वी आर रियली एक्सपेक्टिंग कि कतर का विंटर रियली कम्स बैक क्वाइट लिटरली। बट ये जो है 22 अक्टूबर से ये शुरू होने वाला है and it's going to be a super fun and in fact jo pehla ek hafta hai na yahan par अनलिमिटेड राइड्स जो है 125 कतरी रियाल में मिल रहे हैं। तो यार इतने महीनों के बाद खुल रहा है, अगर आप पहले हफ्ते में ही चले जाओगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आपको ज़बरदस्त वाला डिस्काउंट भी मिल रहा है। और अगर आई रियली हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट लुसेल विंटर वंडरलैंड इज, देन बॉस आप शायद कतर में नए नए आए हो। ठीक है चलिए, अगर आप नए नए भी आए हैं तो मैं बता दूं कि अलमहा आइलैंड की तरफ एक खूबसूरत सा वंडरलैंड है जहां पर आप लिटरली ऐसी एलिस इन वंडरलैंड टाइप का खो जाओगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी राइड्स आउट देयर, इट्स अ लाइक ब्यूटीफुल अम्यूजमेंट पार्क एंड आप ना कह रही हूँ एकदम बच्चे बन जाओगे। सो ये सोच के मत जाओ कि हम हमारे बच्चों को एक तो ले जा रहे हैं, वो दो चार राइड पर बैठ लेंगे, नो नो नो नो नो नो, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए यानी एडल्ट्स के लिए ही मैं तो कहूँगी काफ़ी सारी राइड्स हैं। तो बता दिया मैंने आपको पता लुसेल विंटर वंडरलैंड, डेट भी बता दिया 22 अक्टूबर और रेट भी बता दिया, दैट इज 125 कतरी रियाल, अनलिमिटेड राइड्स फॉर जस्ट 1 वीक। फरहान अख्तर की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची प्लेइंग रॉक ऑन से ये गाना।

25 Katriyal, unlimited rides for just 1 week. This फरहान अख्तर की आवाज में, right here on Mirchi, playing rock on से ये गाना.

Well, parents, आपके लिए एक सवाल है. अच्छा मुझे बताइए कि स्कूल के बाद बच्चों का टाइम कैसे स्पेंड होता है. होमवर्क, ट्यूशन, थोड़ा टीवी, थोड़ा मोबाइल, एंड देन दिन खत्म, है ना. लेकिन अगर आपके बच्चों को स्कूल के बाद कुछ नया एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और कतर के यूथ सेंटर्स, गर्ल सेंटर्स और स्पोर्ट्स क्लब अब 2026-2027 एकेडमिक ईयर के लिए अपनी एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स एक्सपांड कर रहे हैं. और सिर्फ फुटबॉल या स्विमिंग नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएशन, आर्ट्स, लीडरशिप, वॉलंटियरिंग, टेक्नोलॉजी, काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस इंक्लूड किए जा रहे हैं. वेल, अलखोर गर्ल सेंटर में तो 3D प्रिंटिंग और लेजर टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो रही है. और पेरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है दैट प्रोग्राम्स के को स्कूल के शेड्यूल ही अकॉर्डिंगली प्लान किया जा रहा है. मतलब एक्टिविटीज मेनली इवनिंग और वीकेंड्स में होगी और एग्जामिनेशन पीरियड का भी ध्यान रखा जा रहा है. कुछ प्रोग्राम्स शॉर्ट वर्कशॉप्स है तो कुछ लॉन्गर टर्म एक्टिविटीज भी है. और मुझे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह लगती है कि हम अक्सर बच्चों का जो टैलेंट सिर्फ एकेडमिक्स या मार्क के थ्रू ही जनरली वी जज, दैट्स हाउ इट इज आई फील. लेकिन हो सकता है आपका बच्चा कोडिंग में ब्रिलियंट हो, फोटोग्राफी में क्रिएटिव हो या लीडरशिप में नेचुरली अच्छा हो और हमें अभी तक पता ही नहीं हो. तो पेरेंट्स एक बार अपने बच्चों से पूछिए अगर स्कूल के अलावा कुछ भी नया सीखने का मौका मिले तो वो क्या चूज करेंगे. हो सकता है उनका आंसर आपको सरप्राइज कर दे. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murka, murka. La virtua la murka.
1: Mirchi, murka. हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं, नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजूंगा।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 55099389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
6: Hi, this is Anuradha Podwal.
7: This is Vinod Rathore and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
8: Hi, I am Kajiva Rahman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
9: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369, an event by Rami Productions International.
10: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
11: Yes, Bebo.
10: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
11: Yes.
10: Catch kya hai?
11: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
10: I still can't believe it. No catch.
11: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
12: Cut, cut.
13: Who that?
12: Jassi.
13: Jassi? Kaunsi wali Jassi?
12: Jassi who has come, auntie ji?
13: Cut, cut. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल माय फ्रेंड्स, अगर कतर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सोच रहे हो ना, तो ये न्यूज डेफिनेटली आपके लिए है। अच्छा, ड्राइविंग स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, दैट क्लासेस कब से शुरू होंगी, और कई बार फीस पे करने के बाद भी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होने का वेट करना पड़ता है। तो बता दो, कतर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कुछ नया खबर लेके आई है आपके लिए।
2: क्या खबर कतर?
1: वेल, अब कतर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ड्राइविंग स्कूल्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स अनाउंस की है। सबसे पहली बात तो, ड्राइविंग स्कूल्स बिना क्लियर रिटन कॉन्ट्रैक्ट के कस्टमर्स से फीस कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके? दूसरी, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट डेट क्लियरली मेंशन रहनी चाहिए। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि कस्टमर्स को जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक से इश्यूड परमिट नंबर ऑब्टेन करने की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। अब ड्राइविंग स्कूल्स को कंप्लायंस के लिए 1 month ग्रेस पीरियड दिया गया है, जो उन्हें ऑफिशियली नोटिफाई किए जाने के दिन से काउंट होगा, और उसके बाद मिनिस्ट्री इंस्पेक्शंस भी करेगी ताकि चेक किया जा सके कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ये तो हमारी कतर की खूबसूरत बात है ही, राइट? जहां प्रॉपर इंस्पेक्शंस होती है। अब आपके लिए प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ड्राइविंग स्कूल के साथ इन रिक्वायरमेंट्स को लेकर कोई कंप्लेन है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हेल्पलाइन 16001 पर आप कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं, 16001। तो ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं या किसी फैमिली मेंबर का एडमिशन करवा रहे हैं तो 3 चीजें जरूर चेक करिएगा, दैट इज रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कंफर्म ट्रेनिंग स्टार्ट डेट एंड परमिट नंबर। क्योंकि ड्राइविंग सीखने में पेशेंस तो चाहिए, लेकिन क्लासेस कब शुरू होंगी इसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहता है ना? माइक से दिल तक आप फ्री हैं आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Very good morning and welcome back on Mirchi Mornings. हाँ जी, वक्त हो चला है कि आप और मैं यहाँ पर हमारा वही मॉर्निंग वाला गेम खेले जिसे मैं कहती हूँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। बॉस सीन सुना रही हूँ और आज का सीन शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यार आई नो आप ये क्रैक कर ही लोगे। चलिए थोड़े से हिंट भी दे दूंगी इसके बाद में। सो सीन कुछ ऐसा है,
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरा मुंह पोपला हो जाएगा, मेरे बच्चे को बाल गिर जाएंगे, बच्चे को दांत निकल आएंगे, हमारे बच्चे में घर से बाहर निकाल देंगे, फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगा।
3: कितने दिन से जानते हो तुम मुझे? अभी 4 बार भी नहीं मिले हम और बच्चे भी हो गए।
2: आई लव यू।
3: तो मैं क्या करूँ?
2: तुम भी भाई करो।
1: ओके, आप अब क्या करोगे? आप ये करोगे कि 5000 1896 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज करके बताओगे कि आफरीन आखिर ये कौन सी मूवी के सीन सुना रही है। 5000 1896। मीन वाइल अगला गाना बड़ा ही प्यारा सा गाना है, जुबिन नौटियाल की आवाज में और

0: जा ना जा। दिलजीत दोसांझ की आवाज में ये गाना राइट अराउंड मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक और एक नया सवाल, यानी यहाँ पर आफरीन आपके लिए एक नया सीन लेकर आई है। एक नई नहीं, पुरानी मूवी से ही है बॉस।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें साथ यूएस ले जाना चाहता हूँ।
3: और मेरे कानपुरी का क्या होगा?
2: मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ थाम कर नायग्रा फॉल्स देखना चाहता हूँ। और हमारी दो बेटियाँ होंगी बिल्कुल तुम्हारी तरफ, और पिट्सबर्ग बालाजी टेम्पल में हम उनका मुंडन कराएंगे। ओके, तुम हाँ कर दो ना बस।
3: इस तरफ काली उस तरफ गोरी, उन लड़कियों का क्या होगा जो तुम बाहों में लेके घूमना चाहते थे?
0: बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर गलत भी आए हैं और ये कहते भी आए हैं इनफैक्ट के नहीं यार आफरीन पता ही नहीं लग रहा है, और गलत आंसर्स भी आए हैं, जैसे 3 idiots भी किसी ने कहा है। लेकिन नो बॉस, देव का अभी अभी मैसेज आया है सेइंग दिस मूवी इज युवा एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट देव, इंडीड दिस इज युवा मूवी। और इसके लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट था आज का सवाल, बट यस यू समहाउ नेल्ड इट, यू क्रैक्ड इट विद दिस। युवा मूवी का इनिशियली नाम होने वाला था हावड़ा बिच, यस एंड आई थिंक सो। युवा मूवी के गाने मुझे बहुत पसंद है, ऑफकोर्स कैसे नहीं पसंद आएंगे, ए आर रहमान के ये गाने थे एंड प्लेइंग नेक्स्ट ट्रैक ए आर रहमान की ही आवाज में युवा मूवी का ये गाना, कार्तिक है साथ में। आई जस्ट लव द वाइब ऑफ दिस सॉन्ग यार। Enjoy this track right here on Mirchi Gets Hot.

0: चलिए संजू राठौर की आवाज में आपने ये गाना तो सुन लिया है, अतः चल माझा सोबत चल, यानी मेरे साथ चलो, और आगे शो में क्या बातें होती है वो भी तो सुन लो। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक एंड इट्स अ न्यू रेट, यानी मैं गोल्ड रेट की बात कर रही हूँ।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, गोल्ड रेट जो है आज का ये कहता है दैट 1 ग्राम पैम गोल्ड बार इज फॉर 568 कतरी रियाल, वेरस 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2661 कतरी रियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार की बात करें तो 5252 कतरी रियाल पर है, 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16234 कतरी रियाल एंड

0: तोला गोल्ड बार इज फॉर 60,264 कचरी रियाल। ये थे आज के गोल्ड रेट। सोना लेना हो या ना लेना हो, लेकिन हमेशा जब आप नजर रखते हो रेट्स पर तो कभी ना कभी सही मौका मिल जाता है सोना लेने के लिए। राइट हियर आफरीन है आपके साथ अनवर जी मॉर्निंग्स, बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: Milci.
1: Iskra bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन.
2: ओके,
3: राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
3: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप, मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मुझे लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया. मैं बता दूंगा उनको.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
6: इट वाज द बेस्ट. आई लाइक द मैजिक शो.
7: मैजिक शो एंड यू?
6: इट वाज वेरी नाइस.
7: यू लाइक्ड इट?
6: यस.
7: वी शुड कम अगेन?
6: यस.
7: व्हाट्स योर नेम?
6: आयरा.
7: एंड योर्स?
6: अनविता.
7: व्हाट वाज द बेस्ट?
6: द मैजिक शो. दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स.
8: थैंक यू मिर्ची, थैंक यू GWM. वी एंजॉयड. इट्स हॉट.
9: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
10: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
11: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
12: Yes, Bebo.
11: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
12: Yes.
11: Catch kya hai?
12: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
11: I still can't believe it. No catch.
12: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
13: It's back! It's back! LG and Jumbo की मेगा प्रमोशन. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs और audio products पर assured gift vouchers. Plus up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles और Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores या JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
14: नहीं! बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
15: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
16: कैसे रुक सकता है?
17: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
18: 89.6
19: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

वेल, ये लड़की जुड़ गई है आपके साथ इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ और लेकर आई हूँ आपके लिए एक्सचेंज रेट्स। यस, लाइक इट सजेस्ट बेस्ट एक्सचेंज रेट बाय आई पे। आज के ये कहते हैं दर एक खतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.49, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.15। अगर बांग्लादेशी टाका की बात करें तो इट इज एट 33.77। श्रीलंकन रुपीज ऑन द अदर साइड इज एट 90.80 एंड नेपाली रुपीज माई फ्रेंड्स 42.36 पर है। आज के दिन घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, एज आई ऑलवेज से 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: वेल वेल शालमली खोल कर और मोनाली ठाकुर की आवाज में ये गाना आपने कई बार सुना होगा, आई एम सो श्योर। बट इसकी मूवी से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, ये भी मुझे पूरा पूरा यकीन है।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, रानी मुखर्जी की मूवी अय्या मूवी का ये गाना था राइट हियर ऑन मिर्ची। एंड अयो माय, इट्स टाइम कि हम अब गेम खेले। 2 घंटे गुजर भी चुके हैं मेरे शो के, मोर देन दैट। एंड नाउ वी आर बैक टू अनदर सेगमेंट जिसे मैं कहती हूँ मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। वेल आज मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से एक आवाज़ है, एक ऐसी सेलिब्रिटी की आवाज़ है, एक इंटरव्यू था उनका, दैट्स हाउ दैट इंटरव्यू की आवाज़ है। ओके, सो यू हैव टू गेस एज सिंपल एज दैट कि ये कौन सी सेलिब्रिटी की आवाज़ है। सो हियर इट गोज।
2: I'm with the same person since past 10 years. I think I started acting 13 years back. So I did meet him the year I was debuting in Bollywood. I met him and I've been with the same person since then. And I have no thoughts of leaving him or being with anyone else because I think I'm way too happy. I got lucky with the fact that I got someone so stable, so solid in such a beginning time of my career. He's from Denmark.
3: He's an Indian or he's a...
2: No, he's not an Indian. Okay. He's a Danish man.
0: All right. हिंट ईयर वह उन्होंने खुद दे दिया है कि उनका जो पार्टनर है ये सेलिब्रिटी का, ये एक्ट्रेस का, इज अ डेनिश, डेनमार्क से है। कौन है ये? 5000196 इज माई नंबर। और ये जो एक्ट्रेस है बड़ी ही कमाल की एक्ट्रेस है, वेरी फाइन एक्ट्रेस, जिन्होंने किंग खान के साथ भी काम किया है। अब आपने बताना है कि कौन सी एक्ट्रेस की आवाज़ है। ये इतनी भी पुरानी नहीं है, वही बता रही हूँ ना कि इन्होंने कुछ 10 साल पहले ही, तकरीबन 10-15 साल पहले ही इंडस्ट्री में एंटर किया है। और जो आलिया भट्ट सोच रहा है और कह रहा है, इट इज नॉट आलिया भट्ट, इट्स नॉट समवन फ्रॉम इनसाइड द बॉलीवुड, यानी नेपोटिज्म वाले नहीं है, ये आउटसाइड द बॉलीवुड से है। सो यू गॉट टू टेल मी हु दिस इज ऑन 5000196। मीन वाइल के एस चित्रा की आवाज में अगला गाना बिल्कुल मेरे लिए आज सूट करता है। ऑनेस्टली मुझे आज इतनी नींद आ रही है। Enjoy this track on Mirchi's Hot.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस।
3: I don't have to mouth those.
4: Sorry, bro. Sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, but I'm a big fan of Sajid Farhad. इनकी नरेशन, मतलब they just translate Rohit's vision so well in this zone, in this genre. And I wish I get to do a film someday where I have to mouth their lines.
2: तुषार कपूर, in fact, we wish कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ A E I O U. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Bolda, Bollywood, Bollywood, Bollywood Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: इट वाज द बेस्ट। आई लाइक द मैजिक शो।
7: मैजिक शो एंड यू?
6: इट वाज वेरी नाइस।
7: यू लाइक्ड इट?
6: यस।
7: वी शुड कम अगेन?
6: यस।
7: व्हाट्स योर नेम?
6: आयरा।
7: एंड योर्स?
6: अनविता।
7: व्हाट वाज द बेस्ट?
6: द मैजिक शो।
8: दिस रिचार्ज इज सो कूल। बेटर देन एनीथिंग एल्स।
9: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
10: It's back. It's back. LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products for assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry. Offer valid till 19th October.
11: खट खट।
12: कौन है?
11: इशांत।
12: इशांत कौन?
11: इशांत गदाधारी भीम। इशांत
12: खट खट। Who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: आकाश खैर की आवाज में तौबा तौबा इज गोना बी माय ओजी फेवरेट तौबा तौबा। भले जाने जितने भी आगे के वक्त में भी आने वाले वक्त में तौबा तौबा आ जाए। एंड देयर हैज बीन सो मेनी सॉन्ग्स राइट, बट आई थिंक सो दिस हैज टू बी माय पर्सनल फेवरेट। Very good morning and welcome back. Simply Afreen का साथ है this beautiful morning and हम यहाँ पर खेल रहे थे मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, जहाँ से एक आवाज निकली थी एक बड़ी सुंदर और बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस की। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। Well, आवाज किसकी है चलिए वो भी सुनते हैं।
1: I'm with the same person since past 10 years. I think I started acting 13 years back. So I did meet him the year I was debuting in Bollywood. I met him and I've been with the same person since then. And I have no thoughts of leaving him or being with anyone else because I think I'm way too happy. I got lucky with the fact that I got someone so stable, so solid in such a beginning time of my career. He's from Denmark, not an
0: Indian. All right. इसलिए मैंने पूरा audio सुना है ये बताने के लिए कि वो पर्सन डेनमार्क से है एंड दैट्स हाउ आई थिंक सो यू गॉट द हिंट कौन है ये एक्ट्रेस। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लेट्स हियर द राइट आंसर।
2: हाय आफ्रीन, गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रिंसन।
0: हाय प्रिंसन।
2: इनिशियली आई थॉट इट वाज आलिया बट बिकॉज़ हर हस्बैंड इज फ्रॉम डेनमार्क आई बिलीव इट्स तापसी पन्नू।
0: ओके,
2: हैव अ लवली डे, बाय-बाय।
0: यू टू, हैव अ ग्रेट डे। ओके, हेलो,
3: गुड मॉर्निंग आफ्रीन,
0: गुड मॉर्निंग,
3: हाउ आर यू?
0: बिल्कुल बढ़िया। हां राज,
3: एंड द एक्ट्रेस नेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स
0: बिल्कुल सही जवाब। यू टू हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग। हाँ जी,
4: तापसी पन्नू,
0: दैट इज द राइट आंसर। इट वॉज तापसी पन्नू की आवाज एंड आई फाइंड हर सो टैलेंटेड एंड बहुत ही अंडर रेटेड भी है। बहुत ज्यादा इनके पास टैलेंट का भंडार है, वर्सिटैलिटी है इनकी। मुझे मनमर्जिया मूवी बहुत अच्छी लगी थी, पिंक मूवी बहुत अच्छी लगी थी, वे शी हैड क्वाइट स्ट्रॉन्ग रोल आई फील। एंड देन ऑफकोर्स किंग खान के साथ में ये डंकी में भी नजर आई, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था ये कहीं ओवर शैडो हो रही थी। बात है ना, किंग खान के सामने कौन ओवरशैडो नहीं हो जाता है। एंजॉय डंकी का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में और मिर्ची सॉट।

0: 101.6 Mirchi One. It's hot.
1: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
2: Mirchi Fresh Maal.
3: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

वेल दैट वॉज आदित्य की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. Hey, good morning and welcome back on 89.6 Mirchi One on the show Mirchi Mornings. It's a new day, it's a new hafta, जैसे मैं कहती हूँ. और generally जब भी हम नए दिन की तरफ आते हैं एक नए हफ्ते में, तो मैं अक्सर आपसे पूछती हूँ ये सवाल कि भाई आपका वीकेंड कैसा गुजरा. और मैं रियली आई रियली वॉन्ट टू नो, क्योंकि थर्सडे को हम बात करते हैं अबाउट वीकेंड कि हम ये करेंगे वो करेंगे. इतने सारे मैंने ऑप्शंस बताती हूँ मैं आपको, भले ही वो OTT पे हो कि आप ये देख सकते हो वो देख सकते हो. मीनवाइल जहाँ मेरी बात कहूँ तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं दिस वीक, लेकिन ऑल्सो मैंने पूरा तो कंप्लीट नहीं किया. आई एम लेट ईयर, लेकिन मुसाफिर कैफे शुरू किया है एंड आई फेल्ट रियली नाइस. एंड आई एम श्योर मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोगों ने मुसाफिर कैफे पूरा ऑलरेडी देख चुके रहेंगे एंड दे आर लाइक यार आफरीन तुम इतना लेट देख रही हो, होता है यार नहीं मिलता है वक्त. वेल मीनवाइल इफ यू हैव एक्चुअली सीन मुसाफिर कैफे ऑलरेडी, तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको कैसा लगा. मैंने अब तक के 3 या 4 एपिसोड्स देखे हैं एंड आई फाउंड इट क्वाइट नाइस. अब आगे आके देखते होता है क्या और वीकेंड कैसा गुजरा. लेट मी नो 5000 1896. थोड़ी ही देर में लेकर आ रही हूँ कतर की ऐसी खबर जो आपसे जुड़ी हुई होगी. राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. No pierdo la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: It's back! LG and Jumbo की मेगा प्रमोशन। LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs और audio products पर assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles और Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores या JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
7: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
8: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
9: Yes, Bebo.
8: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
9: Yes.
8: Catch kya hai?
9: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
8: I still can't believe it. No catch.
9: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
6: It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
10: Hello, shops. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
11: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
10: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
12: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
10: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
13: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

वेल क्वाइट लिटरली हल्का हल्का सा समा हमारे कतर में लौट रहा है, तो इसी चलते आउटडोर एक्टिविटीज भी लौटनी है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन है आपके साथ। और हर साल की तरह हमारे कतर में ना फिटनेस को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऑफ कोर्स वी हैव अ स्पोर्ट्स डे एज वेल, एंड वेल टॉकिंग अबाउट फिटनेस पर्टिकुलरली लेडीज के लिए यह खबर है, क्योंकि कतर फाउंडेशन का लेडीज स्पोर्ट्स नाइट जो हर साल होता है एवरी ट्यूजडे और वेनसडे इफ आई एम राइट, ये कौन से दिन होता है, ये ट्यूजडे को होता है, यस एवरी वीक ट्यूजडे को होता है, ये अब फिर से दोबारा से लौट आ रहा है। And this is set to return on 13th of October 2026. Yes, अब ये जो है, this is basically activities जो है, sports related, fitness related, community activities for women and girls aged 8 and above. और every Tuesday between 13th of October से लेकर ये 15th of December तक चलने वाला है। ये सिलसिला आपको बता दूं मैं, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे यहाँ पर ये प्रोग्राम है। And the program will bring together Qatar Foundation entities, Qatar Sports for All Federation and local gyms to offer a broad range of activities throughout the season. अब इतनी सारी चीजें हैं ना यहाँ पर, it might include team sports है, running sessions है, fitness classes है, tournaments, challenges, community activities and so many more things. अब यहाँ पर participants जो है, they can register through Education City app. So देखिए ladies, अब जो है आपके जो plans है, cafes और ये सब के तो बहुत हो गए रहेंगे indoor plans अपनी सहेलियों के साथ, अब plan कुछ है अपने सहेलियों के साथ sport related, fitness रिलेटेड बनाओ। मौका भी है, दस्तूर भी है और मौसम भी है, आप साथ दे ही देगा कुछ ही दिनों में, यही उम्मीद है। इसी के साथ अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना जो आपने सुना है राइट हियर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फील गुड वाला गाना। इतना प्यारा सा गाना है ये, और वेल ऐसे ही ये जो फील गुड वाली फीलिंग है ना अगले गाने के साथ बरकरार रखते हुए के की आवाज में ये गाना आपको सुना रही हूँ राइट हियर। उसी के बाद आप श्री इनकी डायरी से कुछ अल्फाज इंतजार कर रहे हैं आपके लिए ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: What a beautiful गाना केके की आवाज़ में right here on मिर्ची. मैं हूँ आफरीन आपके साथ और वक्त हो चला है मेरी शायरी का. लेकिन पता है शायरों की एक बात है जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है. वेल, ये जो शायर होते हैं ना, ये लोग बड़ी खूबसूरती से, बड़े ही मज़े की तरीके से ये अपने हर अल्फाज को, हर इमोशंस को एक अल्फाज दे देते हैं और हर चीज़ों में कुछ ना कुछ इमोशंस जोड़ते हैं. जैसे कभी बारिश की बूंदों में, कभी हवाओं में, कभी फूलों में, तो कभी चांद और सूरज में. अब हम सब ने चांद पर दाहक तो देखे हैं और सूरज की तपिश भी महसूस की है, लेकिन कभी सोचा है अगर इन दोनों के पीछे भी कोई लव स्टोरी होती तो? वेल, किसी ने इसी इमेजिनेशन को बड़े मजेदार अंदाज में अपने अल्फाजों में पिरोया है.
1: आफरीन की डायरी से शायरी. शायरी
0: तो अर्ज किया है कि कभी तो सूरज ने की होगी चांद से मोहब्बत, कभी तो सूरज ने की होगी चांद से मोहब्बत, तभी तो चांद में दाग है. और मुमकिन है चांद ने की होगी बेवफाई, और मुमकिन है चांद ने की होगी बेवफाई, तभी तो सूरज में इतनी आग है. वाह, व्हाट एन इमेजिनेशन यार. मतलब चांद के दाग का भी एक्सप्लेनेशन मिल गया और सूरज के गुस्से का भी. बस यही तो खूबसूरती है शायर की. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ. राइट ऑन विच इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
2: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
1: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
5: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
4: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
6: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs, or audio products. For assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
7: Mere bete aayenge. Mere Karan Arjun aayenge.
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अनिरुद्ध रविचंद्र की आवाज में राइट हियर ये गाना आपने सुना जिंदा बंदा। एंड ऐसे ही एक जिंदा दिल बंदे के बारे में आज बात करेंगे जो हमें सिखाता है कि रिटायरमेंट की ना कोई फिक्स्ड उम्र होती नहीं है, एंड एज इज डेफिनेटली जस्ट अ नंबर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और मेहनत करना, कंसिस्टेंटली काम करना और हर बार कुछ नया करते रहना, ये अगर किसी ने हमें सिखाया है तो वो है नन अदर देन अमिताभ बच्चन।
1: बॉलीवुड बर्थडे बैश।
0: वेल यस, बिग बी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 84th बर्थडे। सोचिए 84 की एज में वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, फिल्म्स भी कर रहे हैं, टेलीविजन होस्ट भी हैं, जनरेशंस को एंटरटेन करते आए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात बताओ इनके बारे में आपको, बच्चन साहब जिनकी आवाज़ के हम दीवाने हैं हाय। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको पता है कि इनकी आवाज़ को रिजेक्ट किया गया था एक समय पर ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ रीडर ऑडिशन में। अमिताभ बच्चन, हाँ जी, इनके आवाज़ की वजह से ही उन्हें रिजेक्ट किया गया था, और फिर वही आवाज़ इंडियन सिनेमा की सबसे पहचानी जाने वाली आवाज़ों में से एक बन गई। दीवार के विजय से लेकर डॉन, शोले, शहनशाह और पीकू तक, हर जनरेशन के पास अपने एक फेवरेट अमिताभ बच्चन वर्जन है। और शायद उनकी जर्नी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सक्सेस के बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, और सेटबैक्स के बाद भी दोबारा शुरू करना नहीं छोड़ा। तो बिग बी को हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी 84th बर्थडे। और इसी के साथ मेरी संडे मॉर्निंग की महफिल भी यही होती है ख़त्म। मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त, तो इजाज़त है, कल फिर मिलूंगी सेम टाइम मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और जाते जाते बर्थडे बॉय के नाम एक गाना तो बनता ही है, इनफैक्ट गाना क्या, पूरा का पूरा एक शो भी बनता है। तो अगले 2 घंटे आपके लिए खास अमिताभ बच्चन का शो साइमा लेकर आ रही है, और मीनवाइल बच्चन साहब का मजे का गाना, एंड दिस इज व्हाट बच्चन साहब इज फॉर मी, बिंदास बंदा। एंजॉय दिस ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रिश्ते में तो वो फिल्म इंडस्ट्री के बाप लगते हैं।
1: बाप लगते हैं।
0: नाम है अमिताभ बच्चन।
1: बच्चन
0: मिर्ची पे बच्चन नामा विद आरजे साइमा।
2: यूं तो दुनिया भर में अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैंस हैं, लेकिन विनीत जैसा कोई नहीं। विनीत, आपको देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि बच्चन साहब कहीं ना कहीं आपके दिल में, रूह में रहते हैं। ये बच्चन साहब की एंट्री आपकी लाइफ में कब और कैसे हुई, और गब्बर से आपको इतना डर क्यों लगता था?
3: गब्बर से तो मैं अकेले नहीं डरता, अभिषेक भी बहुत डरते हैं।
2: अभिषेक बच्चन
3: भी बहुत डरते हैं। अच्छा। मेरा डरना कोई बड़ी बात नहीं है। और बच्चन साहब की मेरी जिंदगी में एंट्री तो सोचूं तो उसी समय से हो गई थी जब से मैंने होश संभाला था। और शोले फिल्म मैंने देखी है। हाँ। बचपन में कम से कम 5-6 बार देख ली थी।
2: अच्छा।
3: हाँ, मेरे पेरेंट्स का ये कहना है कि हम शोले देखने जाते थे और गब्बर सिंह को देख के और मेरा बैंड बजना शुरू हो जाता था।
2: तो जैसे ही गब्बर जो है स्क्रीन पर आता था आप रोने लगते थे।
3: जी, तो ये एक जो है दिक्कत मेरे साथ रही है। और एक ऐसा फोबिया बन गया था गब्बर सिंह मेरे लिए कि काफी समय तक उन्होंने मुझे परेशान किया। और मुकद्दर का सिकंदर में जब उनकी डबल डेकर से एंट्री होती है, कूद के आते हैं और वो उनसे आगा शायद पूछते हैं कौन थे कि भाई तुम, उनको देख के घबरा जाते हैं। तो वो सीन ने मुझे इतना डरा दिया था, मैंने कहा गब्बर आ गया, अब मुसीबत होगी।

0: कुछ ना कुछ पंगा होने
1: और वाला। अभिषेक बच्चन कैसे डरते थे गब्बर से?
0: अभिषेक बच्चन को भी ऐसा ही एक डर था। तो एक बार क्या हुआ, अमजद खान जो है अमित जी के घर पहुंचे और अभिषेक वहां खेल रहे थे, तो वो गब्बर सिंह को देख के डर कर भागे अपने घर के अंदर। पापा गब्बर आ गया। तो पापा बोले गब्बर आ गया? तो बोले तो क्या हो गया? कहते नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, भागना सब।
2: अरे दीवानो मुझे पहचानो।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vieta la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ हैं,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
1: कॉपी मुझे भी भेजना
2: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स से, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
6: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
7: हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: रिश्ते में तो वो फिल्म इंडस्ट्री के बाप लगते हैं। नाम है अमिताभ बच्चन। मिर्ची पे बच्चन नामा विद आरजे साइमा।
1: फैन हो तो ऐसा हो, विनीत चौधरी जैसा हो। विनीत अमिताभ बच्चन कितने बड़े फैन हैं कि उनको देख के ही कोई बता सकता है कि वो अमिताभ बच्चन के कितने बड़े फैन हैं। वही हाव भाव, वही हेयर स्टाइल, वही कद, वही आवाज। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे मैं हूँ आपके साथ साइमा। 11th of October अमिताभ बच्चन का बर्थडे, और विनीत मेरे सामने हैं जो उनसे मिल चुके हैं, उनके बारे में किताब लिख चुके हैं, किताब लोगों के पास आ रही है। इट्स सो अमेजिंग। विनीत बता रहे थे बचपन में वो कैसे गब्बर से डरते थे, और अभिषेक बच्चन भी गब्बर से इतना डरते थे कि एक दिन उन्होंने अमजद खान को अपने घर आते देखा तो वो भाग के गए, पापा पापा गब्बर आ गया।
2: तो वो जो डर था उनको अपने फादर के लिए कि यार ये आके, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसा ही डर मुझे इसलिए लगता था, मुझे अपने आप से डर नहीं लगता था, मुझे लगता था अब बच्चन साहब का पता नहीं क्या उनसी मुसीबत ये खड़ा करने वाला है।
1: अच्छा।
2: ये क्या कर देगा, तो वो देख के ऐसी घबराहट शुरू हो जाती थी कि क्या करें अब तो बस।
1: आपने बच्चन साहब की इतनी सारी फिल्में देखी है। हाँ। इतने सारे किरदार में उनको विजय के तौर पर देखा, और लेकिन अगर मैं आपसे सबसे मुश्किल सवाल पूछूं कि आपकी फेवरेट बच्चन साहब की फिल्म कौन सी है और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है?
2: देखिए, फिल्म तो मेरी जो सबसे फेवरेट है वो दीवार सिलसिला, डॉन मुझे बहुत पसंद है, आखिरी रास्ता मुझे बहुत पसंद है।
1: मैंने आपसे एक कहा था।
2: हाँ, अगर इनमें एक की बात करूंगा तो दीवार
1: दीवार
2: मेरी फेवरेट मूवी है।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super specialty clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

0: हट हट
1: कौन है
0: स्टेन
1: स्टेन कौन
0: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को मैं नहीं देता पैसे जाओ
2: खट खट हो दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
4: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: में तो वो फिल्म इंडस्ट्री के बाप लगते हैं। नाम है अमिताभ बच्चन। मिर्ची पे बच्चन नामा विद आरजे साइमा।
1: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे मैं हूँ आपके साथ साइमा। मेरे साथ हैं अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े वाले फैन विनीत चौधरी। उनका शो ए फॉर अमिताभ अगर आपके शहर में हो तो आप जरूर उसको देखने जाइएगा, तब आपको पता चलेगा किस लेवल के फैन हैं वो। आज उनकी किताब है उनके हाथ में जो कि बहुत जल्दी आप तक भी पहुंच जाएगी। एंड ए फॉर अमिताभ इज द नेम ऑफ द बुक ऑल्सो, राइट? ओके, सो विनीत, आपने बताया कि सारी फिल्मों में से अगर एक पिक आपको करनी हो अमिताभ बच्चन की फिल्म तो वो दीवार होगी।
2: आपने भी दीवार देखी होगी?
1: बिल्कुल।
2: और आप मुझे बता रही थी आप नोट्स लिखती थी।
1: हाँ, दीवार और... फिल्म देखते हुए मैं नोट्स लिख रही थी क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था एक ऐसा हीरो जो गले में मफलर की जगह रस्सी डालकर घूम रहा था। तो अमिताभ बच्चन साहब, बच्चन साहब के बारे में विनीत, जब आप उनसे पहली बार मिले, अक्सर क्या होता है कि हम जिसको बहुत आइडलाइज करते हैं कभी कभी डर लगता है कि अब ये हीरो मेरे सामने आएगा, ये पता नहीं कैसा निकलेगा, ये कहीं मुझे डांट ना दे, कहीं मेरे मन में जो इसका एक इमेज है वो ख़राब ना हो जाए। आप जब बच्चन साहब से पहली बार मिले तो आपके साथ क्या हुआ?
2: देखिए, बच्चन साहब के साथ मेरा मिलना तो बहुत ही एक खूबसूरत इंसिडेंट था जो मैंने भी कभी जीवन में कभी प्लान नहीं किया था। इससे पीछे की एक बात है जो मेरे मन में डर आया था वो अब आपको बताता हूँ। वो डर ये था कि आपको मालूम है कि ए फॉर अमिताभ जो शो था वो स्टार्ट हो चुका था,
1: राइट?
2: कुछ साथी ऐसे मिले जीवन में जो कि बच्चन साहब के फैन थे। सब लोगों में भी हौड़ होती थी कि यार कौन बड़ा फैन है, तो उन्होंने मुझे बड़ा डिस्करेज किया। अरे अमित जी को मालूम चलेगा ना, तुम्हें बहुत डांटेंगे। हाँ। और तुम्हें बहुत डांट के भगा देंगे, तुम क्या कर रहे हो ये सब।
1: अच्छा,
2: तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत है। तो मैंने एक चीज सोची मन में, उन्होंने मुझे बड़ा डिस्करेज किया।
1: अच्छा,
2: कि कहीं इसकी पहचान बच्चन साहब से ना हो जाए या वो इसको जानने लग जाए, पता क्या ऐसी बात थी। उनको बड़ा डर था इस बात का।
1: हाँ।
2: बड़ा मुझे डराया। तो मुझे बड़ा डर लगा, लेकिन मैंने अंत में एक चीज सोची।
1: हाँ।
2: मैंने कहा दिवाली आती है, हम दिवाली मनाते हैं, या ईद आती है।
1: हाँ।
2: या कुछ भी ऐसा होता है, बड़ा ओकेशन आती है, क्या हमें ऊपर वाला फोन करके बोलता है कि फला दिन ईद है, आपको ईद मनानी है या दिवाली मनानी है? मैंने, मुझे तो आज तक किसी ने फोन नहीं किया।
1: हाँ।
2: लेकिन तब भी हम इस चीज को फॉलो करते हैं।
1: हाँ।
2: तो इसी प्रकार से मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं सही की राह पे चल रहा हूं, और मैं तो एक तरह से जो कर रहा हूं मैं डेडिकेट है मेरा जीवन तो उनके लिए, तो मैं कहां से कुछ गलत कर सकता हूं। तो मैंने अपनी राह पे चलते रहिए। तो और ये भी बच्चन साहब के अग्निपथ से सीखा था। अग्निपथ, तू ना झुकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।
1: माय गॉड।
0: आप सुन रहे हैं बच्चन नामा मिर्ची साइमा के साथ, रेडियो की सबसे खूबसूरत लड़की।

0: रिश्ते में तो वो फिल्म इंडस्ट्री के बाप लगते हैं।
1: बाप लगते हैं।
0: नाम है अमिताभ बच्चन।
1: बच्चन
0: मिर्ची पे बच्चन नामा विद आरजे साइमा।
2: अमिताभ बच्चन हिंदुस्तान के वो लेजेंड हैं, जिनकी जिंदगी को देखकर ये कहने का दिल करता है कि जिंदगी बड़ी भी होनी चाहिए, लंबी भी होनी चाहिए और इतनी बुलंद भी होनी चाहिए। 11th of October is Amitabh Bachchan Day और आज मिर्ची के स्टूडियो में मेरे साथ उनके बहुत बड़े वाले फैन हैं, विनीत चौधरी। तो जब आप देखेंगे ना तो आपको अमिताभ बच्चन के अलावा और कोई दिखेगा ही नहीं। इतने बड़े फैन हैं, अपनी पूरी जिंदगी जो है अपनी फैन की जितनी ख्वाहिशें हैं उनको एक प्रोफेशनल शेप देकर अमिताभ बच्चन पर वो किताब लिखकर, विच इज़ कॉल्ड ए फॉर अमिताभ, जो उनके हाथ में मैं देख रही हूँ, और जहाँ जहाँ वो जाते हैं अमिताभ बच्चन की याद दिलाते हैं। विनीत इस वक्त मेरे साथ मिर्ची पे हैं एंड इट इज सो मच फन टू स्पीक टू हिम।
3: मैं बच्चन साहब की कोई भी फिल्म देखता था ना, तो मेरा जो स्टेज होता था मेरा घर का बेड होता था।
2: अच्छा,
3: मैंने सारी फिल्में करी हुई, ऐसी कोई फिल्म मैंने छोड़ी नहीं जो देखने के बाद मैंने पूरी फिल्म रिपीट करी है।
2: मतलब आप फिल्म देखने के बाद वो पूरी फिल्म रिपीट करते थे?
3: हाँ, रिपीट करी है मैंने। ये ऐसा होगा, अब ऐसे यहाँ से बच्चन साहब ने जंप लिया था तो मैं बेड से नीचे कूदता था, रजाइयां वजाइयां रख के उसको ऊंचा बनाता था। तो ऐसे सारे काम की बहुत प्रैक्टिस करी है।
2: आपको कभी डांट नहीं पड़ी कि तुम सारा दिन जो है बच्चन साहब की फिल्म देखते रहते हो?
3: पता भी नहीं चलता था
2: ऐसे
3: कैसे? पर मेरी प्रैक्टिस चलती रहती थी, वो प्रैक्टिस नहीं, हाँ मुझे उस चीज को एंजॉय करता था।
2: आपने सात हिंदुस्तानी से लेकर जो आखिरी बच्चन साहब की फिल्म है
3: कल की
2: वो भी देखी हुई है?
3: सारी देखी है मैंने, कुछ नहीं छोड़ा।
2: और कभी माँ पापा से डांट नहीं पड़ी?
3: नहीं, कभी नहीं,
2: बल्कि पापा ने तो और बढ़ावा ही दिया।
3: इंकरेज ही करा होगा, मदर की वजह से शायद मैं कहीं रुका, वरना मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता, कहीं और मैं सोचता था मुझे पहुँचना है।
2: तो, माँ कहती थी रोटी खा ले वरना गब्बर को बुला दूंगी।
3: क्यों नहीं, क्या कर रहा है तो क्या करेगा, ये सब काम क्यों कर रहा
2: नहीं, लेकिन विनीत वाकई में मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ इकलौता ऐसा एक्टर, एक लेजेंड, मुझे तो याद ही नहीं है उन्होंने कौन सा रोल नहीं किया है। उन्होंने भूत तक का रोल किया है, बेटा, दादा, हीरो, विलन, हर तरह का रोल उन्होंने किया है।
3: सही बात है,
2: ऐसा कोई भी रोल है जो उनसे छूट गया?
3: ऐसे छोटे छोटे रोल भी हैं, मतलब फिल्म बहुत बड़ी है, जैसे ये मर्द फिल्म, मैं ऐसा नहीं कहूँ बड़ा इंस्पायरिंग करेक्टर था, मैं ऐसा नहीं मानता। मतलब फिल्म बच्चन साहब तो कभी किसी में बुरे लगे नहीं, हर फिल्म में अच्छे लगते हैं। तो मेरी किसी से मुलाकात हुई या बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, तो वो बोलते हैं मर्द। तो मैं सोच में पड़ गया कि अगर मर्द देख के भी लोग बच्चन साहब के फैन हैं तो जब दीवार और शोले जो देखते होंगे उसको समझते होंगे, तो एक अलग ही दुनिया है वो तो।
4: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं बच्चननामा मिर्ची साइमा के साथ रेडियो की सबसे खूबसूरत लड़की।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए आहा। अरे

0: Cafe Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na fiind vala burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
2: हाँ।
3: वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000।
2: हाँ।
3: वन सेकेंड सर, आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं।
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले।
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: मुझे नोट लेके जा रहा है, उस पर मेरा नाम लिखा है।
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं। मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो, वहीं आके बजाऊंगा।
3: आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए। सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी, स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं। सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे, 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
3: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है, नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
7: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
10: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

أشهد أن لا

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: खट खट। अगर कर।
2: अगर कर हूँ।
1: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
2: खट खट हूँ दैट।
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
4: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
5: What?
6: My name is Anthony Gonsalves.
7: Gonsalves?
6: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: Lobby number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: रिश्ते में तो वो फिल्म इंडस्ट्री के बाप लगते हैं।
4: बाप लगते हैं।
3: नाम है अमिताभ बच्चन।
4: बच्चन।
3: मिर्ची पे बच्चन नामा विद आरजे साइमा।
5: 11 अक्टूबर की सुबह से जलसा के सामने अमिताभ बच्चन के फैंस का एक समंदर होगा और फिर अमिताभ बच्चन निकलेंगे, हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोलेंगे। और ये जो रिवायत है ये कब से चलती आ रही है, 11th ऑफ अक्टूबर इज अमिताभ बच्चन डे। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे मैं हूँ आपके साथ साइमा। मेरे साथ हैं अमिताभ बच्चन साहब के बहुत बड़े वाले फैन विनीत चौधरी, जो पूरे हिंदुस्तान में एक शो करते हैं ए फॉर अमिताभ, और उस शो को देखने के लिए कितने लोग जो है कितना इंतजार करते हैं। विनीत मेरे साथ हैं और हम दीवार की बात कर रहे थे।
6: दीवार की जो सबसे बड़ी बात है उसका स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त है, जिससे आप भी इंस्पायर हुए, मैं भी इंस्पायर था। पूरी दुनिया में उस स्क्रीन प्ले को पढ़ाया जाता है फिल्मों की किताब में, तमाम यूनिवर्सिटीज में। तो उसका एक जो क्लाइमेक्स है शायद फिल्म इतिहास का सबसे अच्छे क्लाइमेक्स में माना जाता है। और इतना बड़ा वो सीन था, लगभग 3 मिनट का डायलॉग है। इसके बारे में बताऊंगा, बात यह कि जब बच्चन साहब उस स्टूडियो पहुंचे तो वहां पर जो है यश चोपड़ा जी ने सेट लगा रखा था, वो टाइम के पाबंद थे, सुबह सुबह सेट पे पहुंच गए। तो उन्होंने यश जी को जाके एक बात बोली कि मैं अभी इस सीन को देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ये इतना खतरनाक सीन है, इतना जबरदस्त सीन है कि मुझे सोचना पड़ेगा इसके लिए।
5: अच्छा।
6: ये इमोशंस लाने के लिए। तो बोले ठीक है, क्योंकि जानते थे कि मेरा जो कलाकार है बहुत जबरदस्त है, वो हल्के में सीन नहीं करेगा। बोले आप जाके अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो अपने रूम में गए, उन्होंने अंदर से लॉक कर लिया। अब यकीन माना, ना बच्चन साहब ने नाश्ता किया, ना लंच किया, ना शाम का खाना खाया, वो उसी रूम में बंद थे,
5: उस सीन की रिहर्सल कर रहे थे।
6: अब वो बैठे हुए थे, क्या कर रहे भगवान जाने वो क्या कर रहे थे, वो अंदर थे। उसके बाद वो तकरीबन रात हो चुकी थी, 10 के आसपास या 9 और 10 के बीच में रूम से बाहर निकले, ऑलमोस्ट पूरी यूनिट सो चुकी थी वहाँ पर स्टूडियो में, कि पता नहीं आज क्या आने भी नहीं आना, बाहर सो जाओ सारे, इवन यश जी सो रहे थे। तो बच्चन साहब जब बाहर निकल गया, दरवाजा खुला, तो यश जी के पास सीधा गए कि अब मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने यश जी को बोला, तो यश जी बोला ठीक है जी, स्टार्ट यूनिट को स्टार्ट करा कि आ जाओ सब करो, सब अपने सेट हो गए। तो उन्होंने बोला मेरी आज एक काम की एक शर्त है। तो यश जी बोले हाँ बोलिए। तो बोलते हैं कि मैं ये सीन जो दे रहा हूँ इसकी आप रिकॉर्डिंग यहीं के ही करेंगे। पहले क्या होता था कि सीन पहले होता था, रिकॉर्डिंग बाद में हुआ करती थी,
5: डब होता था,
6: डबिंग होती थी। तो इसकी डबिंग आप सीन के साथ साथ करेंगे। ऐसा बच्चन साहब की फिल्म में 2 बार ही हुआ है कि 2 सीन ऐसे हैं जो साथ के साथ शूट किए गए थे।
5: अच्छा।
6: एक तो दीवार फिल्म का ये सीन क्लाइमेक्स वाला, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, और दूसरी बार ये होता फिल्म याराना के टाइम। याराना फिल्म के अंदर एक सीन है कि बच्चन साहब लिफ्ट में जा रहे होते हैं और एक लेडी लिफ्ट में जाती है, लेकिन जब ऊपर से लिफ्ट आती है तो वो बिल्कुल बुढ़िया हो चुकी होती है, वो कहते हैं मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगा। तो वो दोनों टाइम का ये सीन की जो इमोशन से मैं दोबारा नहीं ला पाऊंगा, तो मैं इसको एक बार में ही शूट करूंगा और डबिंग भी एक साथ करूंगा। तो वो सीन ऐसा था दीवार का, बच्चन साहब ने वहीं के वहीं उसको डब किया था। और यश जी भी बोलते, सभी को पता है बात, तो सभी लोग बखूबी जानते हैं कि जब वो सीन हुआ था तो उन्होंने 1 टेक के अंदर उसको 3 मिनट के, 3.5 मिनट के सीन को ओके किया था और पूरी यूनिट ने खड़े होकर ताली बजाई थी।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्र बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट यू नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रियन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी कि अरे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Dosti kai kusul hai madam. No sorry, no thank you.
5: Bhai saab, sorry and thank you. Hame dosti nahi, entertainment chahiye.
6: Tum Mirchi suno na, jahan entertainment khub milega.
7: Khub milega.
8: Qatar ka number one radio station.
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: रिश्ते में तो वो फिल्म इंडस्ट्री के बाप लगते हैं। नाम है अमिताभ बच्चन। मिर्ची पे बच्चन नामा विद आरजे साइमा।
1: रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ साइमा। 11th of October अमिताभ बच्चन के जश्न का दिन होता है आज। वो जश्न मैं मना रही हूँ उनके वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस विनीत चौधरी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है एज अ फैन उनको डेडिकेट कर दी है। किताब लिख दी है ए फॉर अमिताभ, एक शो करते हैं वो जो पूरे हिंदुस्तान में लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। विनीत अमिताभ बच्चन से मिल चुके हैं, अमिताभ बच्चन को पता है वो उनसे कितना प्यार करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक फैन और एक स्टार के बीच में जब होती हैं हम तक नहीं पहुंचती। आज विनीत के जरिए हम वो पता करने की कोशिश करें। इनफैक्ट विनीत मुझे बता रहे थे एक ऐसे फिल्म के बारे में, इनफैक्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जहां पे अमिताभ बच्चन की एक फिल्म फ्लॉप होती है और इंडस्ट्री में सेलिब्रेशन होता है।
2: ये एक ऐसी फिल्म है ईमान धर्म, 1977 में जब बच्चन साहब का करियर पीक पे था उस टाइम फ्लॉप होना बहुत बड़ी बात थी और इंडस्ट्रीज में पार्टी हुई थी।
1: क्यों?
2: कि सुपरस्टार की फिल्म फ्लॉप हो गई, हमें कोई पूछता नहीं है, नंबर एक से लेकर 10 तक अमिताभ बच्चन, मतलब लोगों की ईर्ष्या का कारण था। साहिबा जी आप भी लोगों की ईर्ष्या का कारण है।
1: तो मुझ पे ना, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक सुपरस्टार की फिल्म फ्लॉप हो गई तो पार्टी हुई, क्या अब शायद हमारा चांस हो सकता है।
2: ऋषि कपूर सलीम जावेद अख्तर साहब के पास गए, उनके घर पे गए, उनसे ड्रिंक्स मांगी कि पार्टी करेंगे, बड़ा खुश हुए, वहाँ पे बड़ा मस्ती कर रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो कि भाई आज सुपरस्टार की फिल्म फ्लॉप हो गई।
1: और इसी में आपने वो मिस्र की बात जो आप बता रहे थे।
2: हाँ, मिस्र का वही है कि जब बच्चन साहब अपने पीक पे थे करियर में, तो एक दौर ऐसा था कि मिस्र की जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री थी पूरी तरह से बैठ चुकी थी।
1: अच्छा।
2: क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दीवान की एक एक्टर के प्रति थी मिस्र में, अमिताभ बच्चन के प्रति। और मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि जब मेरा फैन क्लब में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे तो लोग मुझसे बात करते, तो मुझे मिस्र से बहुत फोन आया करते थे।
1: तो मिस्र में जो बच्चन साहब की स्टारडम थी वो अलग ही लेवल,
2: अलग ही लेवल की थी। उनकी मूवीज में कोई किसी को पूछता नहीं था वहाँ, मतलब बच्चन साहब की कोई भी मूवी आने का मतलब है एक तरह का एक अलग ही हंगामा होना, एक त्योहार की तरह वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे लोग। जितने हिंदुस्तान में उनके बड़े फैन थे उतने बड़े फैन इजिप्ट में भी उनके थे। तो अब उनकी गवर्नमेंट परेशान हो गई है, हमारी मूवीज बनती है कोई देखने नहीं जाता, फ्लॉप हो रही है, तो इस एक्टर को बैन कर दो। और उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को बैन कर दिया, उनकी मूवीज को बैन कर दिया, उनको नहीं तो उनकी मूवीज बैन कर दी गई। अब लोग बड़े परेशान हुए, तो लोगों ने क्लब बनाया, अमिताभ बच्चन क्लब्स बने वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एज ग्रुप्स में जगह जगह जगह पे। तो उन्होंने फिर अपना जो है क्लब्स में मिलकर बच्चन साहब के गाने लगाना फिल्में लगाना शुरू करा। अब इसके ऊपर भी रोक थी कि ऐसा ना हो, क्योंकि उनकी फिल्म उसके लिए बैडली इफेक्टेड थी। तो इसलिए वहाँ पे चुना गया लोगों ने चोरी छुपे। थर्सडे नाइट्स में बच्चन साहब के क्लब्स बड़े एक्टिव होते थे, वहाँ पे उनकी मूवीज के गाने, उनकी फिल्में दिखाई जाती थी। चोरी छुपे ये सब काम बहुत चला, अंत में गवर्नमेंट को जाके वो बैन लिफ्ट करना पड़ा। उनको लगा कि यार इसको आने दो, हम कुछ तो कमाई कर रहे हैं, हमारी फिल्में तो कुछ नहीं कमा रहे।

0: आप सुन रहे हैं बच्चननामा मिर्ची साइमा के साथ रेडियो की सबसे खूबसूरत लड़की
1: दद्दू तुम दद्दू तुम
2: बोल बोल बोल सपने में किसको देखा

वेल, ये लड़की जुड़ गई है आपके साथ इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ और लेकर आई हूँ आपके लिए एक्सचेंज रेट्स। यस, लाइक इट सजेस्ट, बेस्ट एक्सचेंज रेट बाय आई पे आज के ये कहते हैं। धड़ी खतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.49, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.15। अगर बांग्लादेशी टाका की बात करें तो इट इज एट 33.77। श्रीलंकन रुपीज ऑन द अदर साइड इज एट 90.80 एंड नेपाली रुपीज माई फ्रेंड्स 42.36 पर है। आज के दिन घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, एज आई ऑलवेज से 89.6 पर शिवान, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
2: ओके
3: मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
2: 2 घंटे करना क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रहा
3: हूं। वही, तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
7: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्पोला गौरव, और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में, और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉय इट।
8: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
9: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
10: And show Gaurav, Afin, thank you very much.
11: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026, कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
12: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
13: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
15: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: वेलकम बैक जी, स्वागत है आपका राइट ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और फटाफट से सोचा कि चलिए आके आपको जरा गोल्ड के रेट्स बता दूं।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, आज के जो गोल्ड रेट्स है वो कुछ इस तरह से है, दैट 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 568 कतरी रियाल, वेर एज आज 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2661 कतरी रियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5252 कतरी रियाल, 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16234 कतरी रियाल, एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 60264 कतरी रियाल। ये थे आज के गोल्ड रेट्स। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Alpardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
3: I don't have to mouth those.
4: Sorry, bro. Sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, but I'm a big fan of Sajid Farhad. इनकी नरेशन, मतलब they just translate Rohit's vision so well in this zone, in this genre. And I wish I get to do a film someday where I have to mouth their lines.
2: तुषार कपूर, in fact, we wish कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी franchise में lines ना मिले. सिर्फ A E I O U. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है. फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस. मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा. फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: डिलीवरी भी टेक्स्ट बुक वाली नहीं थी, लेकिन शायद इसी वजह से जब नाना स्क्रीन पर आते थे तो लगता था कि कैरेक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा, वो सच में वही इंसान है। परिंदा का अन्ना हो, क्रांतिवीर का प्रताप हो, खामोशी का जोसेफ हो, अब तक छप्पन का साधु हो, या फिर वेलकम का उदय शेट्टी, नाना ने हर कैरेक्टर को अपनी एक अलग आइडेंटिटी दी। एक तरफ क्रांतिवीर का वो एक्सप्लोसिव मोनोलॉग है और दूसरी तरफ खामोशी में बिना कुछ कहे आंखों से इमोशंस कन्वे करने वाले एक्टर, यानी वॉल्यूम चाहे हाई हो या जीरो, इम्पैक्ट हमेशा 100%। और नाना पाटेकर को हम सिर्फ उनके अवार्ड्स के लिए या आइकॉनिक डायलॉग्स के लिए याद नहीं रखेंगे, हम उन्हें इसलिए याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि सुपरस्टार बनने के लिए परफेक्ट फेस नहीं, परफेक्टली रियल होना जरूरी है। और शायद इसीलिए नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स के लिए रिटायरमेंट, गुड बाय या एंडिंग जैसे वर्ड्स काम नहीं करते। वी लव यू नाना सर, एंड यू विल ऑलवेज बी इन आवर हार्ट्स। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड।
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ। राज जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं
1: है?
2: नहीं, वही मैं, जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
1: मुझे भी भेजना।
2: राज जी एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स से, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।
4: खट खट,
5: हो देर
4: बनता
5: बनता हूँ।
4: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
5: खट खट, हो देर।
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: कुछ एक्टर्स एक्टिंग नहीं करते, वो एक्टिंग जीते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और नाना पाटेकर भी उन्हीं एक्टर्स में से थे यार। उनका चेहरा कन्वेंशनल बॉलीवुड हीरो जैसा नहीं था, उनकी आवाज पॉलिश्ड नहीं थी और उनकी डायलॉग

0: होता है।
1: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, अनन्या पांडे का डेब्यू हो रहा है। अरे अरे अरे, एक बार फिर से नहीं यार, यहाँ नया सिनेरियो है। बेसिकली आईफा अवार्ड्स के बारे में पता होगा आपको, सो शी इज मेकिंग हर होस्टिंग डेब्यू, जहाँ वो ज्वाइन करेंगी करण जौहर, वरुण धवन एंड मनीष पॉल को। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। जेलर 2 को मिल चुका है UA16+ सर्टिफिकेट, यानी कि बच्चे जो हैं वो इस फिल्म को देखने थिएटर्स में अलाउड नहीं है। बाकी रजनीकांत की ये मच अवेटेड सीक्वल जो है वो 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, बट सिर्फ रजनी सर नहीं, मैं एक और इंसान को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूँ, एंड दैट इज विद्या बालन। मैन, रामायण का रिलीज जल्दी हो सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट। सो पहले ये फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, अभी भी हो रही है, बट एक्चुअली 4 नवंबर को इसके पेड प्रीव्यूज की प्लानिंग चल रही है। कॉन्फर्मेशन मिलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चे पे आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। एंड एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट इट्स टाइम टू फाइंड अ मिर्ची फिल्मची इन यू। यस यू हर्ड इट राइट। सो द ड्रिल ऑन अ डेली बेसिस इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजने के लिए, ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। सो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं अंकुश जी। तो मेरा पहला सवाल है, कटरीना कैफ की कॉमेडी फिल्म जिसमें वो एक वॉनबी एक्ट्रेस बनी है,
3: तीसमार खान।
0: बहुत ही बढ़िया। तीसमार खान के मेल लीड कौन है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जूही चावला के साथ जिसमें दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है,
3: आलू है ना?
0: हाँ हाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू।
3: आलू मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
0: बहुत बढ़िया। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में जूही चावला के पापा कौन है?
3: कादर खान।
0: कादर खान की फिल्म जिसमें उनका होटल का बिजनेस होता है,
3: दूल्हे राजा।
0: बहुत बढ़िया। दूल्हे राजा में फाइव स्टार महाराजा इंटरनेशनल के सामने अपना ढाबा कौन खोलता है?
3: गोविंदा।
0: गोविंदा की फिल्म जिसमें वो हीरोइन की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए नौकर बनते हैं,
3: हीरो नंबर वन।
0: बहुत बढ़िया। हीरो नंबर वन की फीमेल लीड का नाम?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर का निकनेम लोलो है, बेबो किसका निकनेम है?
3: करीना कपूर का।
0: क्या बात है। करीना कपूर की फिल्म जिसमें रोबोट्स हैं?
3: शाहरुख खान के साथ है। हाँ हाँ, रावण।
0: बहुत बढ़िया। रावण के मेल लीड कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं?
3: थेरेपिस्ट बने हैं।
0: हाँ जी।
3: ये
0: चलिए कोई बात नहीं, बट इस गेम को जहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी मैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं, अगर आपको इसका जवाब पता है तो यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके डीएम्स में अपना नंबर भेजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जिसके जरिए मैं आपके अंदर के मिर्ची फिल्मची को ढूंढती हूँ। सो आज इस गेम की शुरुआत की हमारे साथ अंकुश जी ने। अब इसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ है आयुष।
3: हेलो आयुष, कैसे हैं आप?
4: मैं बढ़िया, आप सुनाओ?
3: बिल्कुल बढ़िया। आप जरा और बढ़िया कर दीजिए ताकि मैं अपना गेम आगे कंटिन्यू कर पाऊँ यार।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो जिस पॉइंट पे अंकुश जी अटके थे, इट वाज शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं,
4: डियर जिंदगी।
3: डियर जिंदगी में शाहरुख खान के पास थेरेपी लेने कौन जाता है?
4: आलिया भट्ट।
3: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप दोएंगे ना इसको,
4: गली बॉय। गली बॉय।
3: गली बॉय के मेल लीड कौन है?
4: रणवीर सिंह।
3: रणवीर सिंह की फिल्म जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर है,
4: सिम्बा।
3: वाह, सिम्बा की गर्लफ्रेंड इन द मूवी,
4: सारा अली खान।
3: सारा अली खान की डेब्यू फिल्म,
4: ओह केदारनाथ।
3: केदारनाथ के मेल लीड का नाम?
4: सुशांत सिंह राजपूत।
3: सुशांत सिंह राजपूत ने कौन सी बायोपिक की है?
4: एम एस धोनी
3: में साक्षी धोनी का रोल किसने प्ले किया है?
4: कियारा आडवाणी।
3: क्या बात है, यहाँ लोग गड़बड़ाते हैं, दिशा बोल देते हैं। कियारा आडवाणी ने कौन सी हॉरर कॉमेडी में काम किया है?
4: भूलभुलैया।
3: भूल भुलैया टू में रूह बाबा कौन है?
4: कार्तिक आर्यन।
3: कार्तिक आर्यन की फिल्म विद भूमि पेडनेकर,
4: पति पत्नी और वो।
3: पति पत्नी और वो में कार्तिक का अफेयर किससे है?
4: अनन्या पांडे।
3: अनन्या पांडे की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म
4: चांद मेरा दिल।
0: क्या बात है, तो इसी के साथ हमें मिल गया आज का हमारा दूसरा
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो अगर आपको ये गेम पसंद है और आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मिर्ची श्रुति के डीएम्स में अपना नंबर डाल दीजिए, आपको कॉल जरूर आएगा। हाँ, थोड़ा लेट भले ही हो सकता है बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स दैट आई गेट, बट यू नो इंतजार का फल मिर्ची फिल्मची होता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
2: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे। That used to be the spot in my school.
3: Toilet? हाँ। School था, कंजर खाना खुला हुआ था।
2: तो दोनों।
1: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, only on Mirchi it's hot.
4: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कुछ एक्टर्स स्क्रीन पर कैरेक्टर प्ले करते हैं और कुछ एक्टर्स कैरेक्टर को जिंदा कर देते हैं।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नाना पाटेकर उन्हीं एक्टर्स में से हैं। मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, और नाना पाटेकर की अगर बात करें तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस लाउड होने के लिए लाउड नहीं था। उनकी आवाज, उनका गुस्सा, उनका पॉज, वो आंखों का एक्सप्रेशन, सब कुछ इतना रियल लगता था कि कभी कभी लगता था यार कैरेक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा, बस अपनी जिंदगी जी रहा है। चाहे वो परिंदा के अन्ना हो, क्रांतिवीर के प्रताप हो, खामोशी के जोसेफ हो, शागिर्द के करप्ट पुलिस ऑफिसर हो, या तिरंगा का पेट्रियोटिज्म से भरा कॉप हो, नाना ने हर बार प्रूव किया कि हीरो बनने के लिए कोई कन्वेंशनल हीरो जैसा दिखना जरूरी नहीं होता। उन्होंने नियरली 5 decades तक हिंदी और मराठी सिनेमा में काम किया, 3 national film awards जीते और पद्मश्री से भी सम्मानित हुए। और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्म्स हैं, उनके डायलॉग्स हैं और वो परफॉर्मेंसेस हैं जो शायद जनरेशंस तक एक्टर्स को एक्टिंग समझाती रहेंगी। तो आज मेरे 5 का पंच में बात इसी एक्टर की, जिनके लिए लेजेंड शब्द भी थोड़ा छोटा लगता है। शुरुआत करते हैं लिस्ट की विद द फिल्म परिंदा, जो 1989 में रिलीज हुई थी, जिसे नाना पाटेकर की फिल्मोग्राफी का एक माइलस्टोन कहना कम होगा। ये वो फिल्म थी जहां हिंदी सिनेमा के गैंगस्टर जॉनरा को एक डार्कर, मोर रियलिस्टिक टोन मिला। विधु विनोद चोपड़ा की 1989 की इस फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ सेंट्रल कैरेक्टर्स में थे, लेकिन नाना एज अन्ना पूरी फिल्म पर एक अलग ही शैडो डालते हैं। और इस परफॉर्मेंस के लिए नाना पाटेकर को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और आज भी ये फिल्म इंडियन गैंगस्टर सिनेमा की लैंडमार्क फिल्म्स में से एक है। वेल, नाना स्पेशल मेरी इस लिस्ट में और भी 4 ऐसे ही फिल्मों की बातें होंगी, बट इन अ वाइल्ड, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Lámbala! ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga! ¡Murga!
3: हेलो
4: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल?
4: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
8: यस बेबो।
7: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
8: यस।
7: कैच क्या है?
8: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
7: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
8: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
9: खट खट।
10: कौन है?
9: अज्जू।
10: अज्जू कौन?
9: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
10: खट खट, हू दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

He was not your typical Bollywood hero. मिर्ची पिट्यून नो आप और हिंदी सिनेमा में हीरो की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है राइट गुड लुक्स परफेक्ट हेयर स्टाइल स्लो मोशन एंट्री और मेजर्ड डायलॉग डिलीवरी लेकिन फिर आए नाना पाटेकर उन्होंने प्रूव किया कि हीरो बनने के लिए ये सब जरूरी नहीं है एक कन्वेंशनल चेहरा रॉ आवाज और नेचुरल डायलॉग डिलीवरी के साथ भी आप पूरी स्क्रीन पर छा सकते हैं फ्रॉम परिंदा टू क्रांतिवीर टू अग्नि साक्षी टू अब तक छप्पन टू अपहरण टू वेलकम एंड नट सम्राट तक उन्होंने विलन हीरो कॉप गैंगस्टर कॉमेडियन और ब्रोकन ह्यूमन बीइंग हर रोल को अपने अंदाज में निभाया तो आज सवाल ये नहीं है कि नाना पाटेकर की लेगेसी क्या है सवाल ये है कि उनकी लेगेसी को डिफाइन करने के लिए हम कितनी फिल्में गिन सकते हैं Well, मैं तो आज सिर्फ 5 फिल्में ही लेकर आई हूँ जिसमें सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट परिंदा अब नंबर 2 पे क्रांतिवीर की बात करते हैं फिल्म रिलीज हुई थी 1994 में जहाँ नाना बने प्रताप नारायण तिलक एक एंग्री रिबेलियस आदमी जो अपने तरीके से सिस्टम से लड़ता है कैरेक्टर एंटी हीरो था लेकिन ऑडियंस उसके साथ खड़ी थी और क्लाइमेक्स का वो मोनोलॉग तो याद होगा आपको प्योर नाना पाटेकर मैजिक इनफैक्ट अ ट्रिविया अबाउट दिस पर्टिकुलर मोनोलॉग वॉज कि डायरेक्टर साहब ने उनको बस सीन समझाया था उनके पास कोई लिखे हुए डायलॉग्स नहीं थे बट नाना ने सब कुछ अपने दिमाग में रखा और एक्शन बोलते ही जो शुरू हुए एवरीबॉडी वॉज मेस्मराइज्ड और आज भी वो सीन देख के हर दूसरे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनफैक्ट इस रोल के लिए तो नाना ने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी जीता था चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट खामोशी द म्यूजिकल जो 1996 में रिलीज हुई थी इस फिल्म के साथ ही संजय लीला भंसाली ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था जिसमें सलमान खान और मनीषा कोराला के साथ नाना पाटेकर ने जोसेफ का रोल किया और आयरनी देखिए जो एक्टर क्रांतिवीर में अपनी आवाज के लिए याद किया जाता है यहाँ एक ऐसे फादर का रोल करता है जो बोल और सुन नहीं सकता नाना ने बिना डायलॉग्स के जो इमोशंस डिलीवर किए हैं दैट प्रूव्ड कि ग्रेट एक्टिंग को वर्ड्स की जरूरत नहीं होती वेल मेरी इस लिस्ट में नाना की दो और ऐसी ही अल्टीमेट फिल्मों की बातें बाकी है बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट

0: कुछ एक्टर्स की फिल्मोग्राफी उनकी पॉपुलैरिटी बताती है, कुछ की उनके अवार्ड्स, लेकिन कुछ होते हैं जिनकी फिल्मोग्राफी ये बताती है कि भाई उन्होंने सिनेमा को कितना बदला।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चे पे ट्यून इन हो आप, और नाना पाटेकर सर की बात करें तो उनकी जर्नी भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने कभी टिपिकल बॉलीवुड हीरो बनने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट उनकी सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस अगर देखें तो उन कैरेक्टर्स की रही हैं जो मॉरली ग्रे थे, एंग्री थे, ब्रोकन थे, डेंजरस थे, या फिर बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान थे। मतलब एक एक्टर जो एक ही बॉक्स में फिट नहीं हो सकता। आज उनके जाने की खबर के साथ एक एरा खत्म हुआ है, लेकिन नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स जाते नहीं हैं, वो अपने कैरेक्टर्स में हमारे साथ रह जाते हैं। और इसीलिए आज पांच का पंच की लिस्ट में मैं उनकी ही कुछ पांच अल्टीमेट फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट परिंदा, नंबर दो पे क्रांतिवीर, नंबर तीन पे खामोशी द म्यूजिकल, अब बारी है टू टॉक अबाउट शागिर्द ऑन नंबर फोर। फिल्म रिलीज हुई थी 2011 में, डायरेक्टेड बाय तिग्मांशु धूलिया, और ये एक ग्रिटी क्राइम फिल्म थी जिसमें नाना थे इंस्पेक्टर हनुमंत सिंह, एक करप्ट, इंटिमिडेटिंग और मॉरली ग्रे पुलिस ऑफिसर। नाना ने अपने इस कैरेक्टर को इतना अनप्रेडिक्टेबल रखा कि आप उसे हेट भी करते हैं और स्क्रीन से नजर भी नहीं हटा पाते। चलो मूविंग ऑन, नंबर फाइव पे लेट्स टॉक अबाउट तिरंगा, जो रिलीज हुई थी 1993 में, डायरेक्टर मेहुल कुमार की पेट्रियोटिक एक्शन फिल्म जिसमें नाना पाटेकर बने इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले अलॉन्ग साइड राजकुमार, जिनके सामने था रूथलेस टेररिस्ट प्रलय नाथ गेंडा स्वामी, जिसके बाद शुरू होती है देशभक्ति, एक्शन और लार्जर देन लाइफ डायलॉग से भरी 90s वाली सिनेमेटिक जर्नी। तिरंगा शायद नाना की मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म ना हो, लेकिन ऑडियंस की मेमोरी में इसकी एक अलग ही जगह है, क्योंकि कुछ फिल्में अवार्ड्स के लिए नहीं होती, कुछ फिल्में नॉस्टैल्जिया के लिए होती हैं, और शायद नाना पाटेकर की लेगेसी को डिफाइन करने का ये सबसे सिंपल तरीका है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप मुझे अपनी नाना पाटेकर की फेवरेट फिल्म बताएं। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई अनन्या पांडे का डेब्यू हो रहा है। अरे अरे अरे, एक बार फिर से नहीं यार, यहाँ नया सिनेरियो है। बेसिकली आईफा अवार्ड्स के बारे में पता होगा आपको, सो शी इज मेकिंग हर होस्टिंग डेब्यू, जहाँ वो ज्वाइन करेंगी करण जौहर, वरुण धवन एंड मनीष पॉल को। बाकी की रीड्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। जेलर 2 को मिल चुका है UA16+ सर्टिफिकेट, यानी कि बच्चे जो हैं वो इस फिल्म को देखने थिएटर्स में अलाउड नहीं है। बाकी रजनीकांत की ये मच अवेटेड सीक्वल जो है वो 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। बट सिर्फ रजनी सर नहीं, मैं एक और इंसान को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूँ, एंड दैट इज विद्या बालन। मैन रामायण का रिलीज जल्दी हो सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट। सो पहले ये फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, अभी भी हो रही है, बट एक्चुअली 4 नवंबर को इसके पेड प्रीव्यूज की प्लानिंग चल रही है। कॉन्फर्मेशन मिलते ही आपको जरूर बताऊंगी। बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
4: Are, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi,
6: it's hot.

0: अरे पूरी दुनिया साड़ी की दीवानी।
1: बॉलीपीडिया
0: फिल्म का नाम जरा गेस करना जानी। एक सच्चे फिल्मची ने तो समझ लिया होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी हम आपके हैं कौन, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1994, डायरेक्टेड बाय सूरज बड़जात्या। और इस मूवी में सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित लीड रोल्स में थे। भैया फिल्म अलग अलग रीजंस की वजह से चर्चा में रही है और आज इस मूवी में माधुरी दीक्षित ने वो जो पर्पल साड़ी पहनी थी ना उसकी चर्चा कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये साड़ी ऑलमोस्ट 13 लाख के बजट पे तैयार की गई थी बाय डिजाइनर अन्ना सिंह। और तो और ये पूरी की पूरी मूवी जो है वो 4.5 करोड़ में बनी थी, उसमें ये साड़ी का दाम सोच लो 12.5-13 लाख। अच्छा है। नॉट जस्ट दैट, इस साड़ी का डिमांड इस मूवी के बाद इस लेवल पे बढ़ गया कि हर दूसरे दुकान में इसको सेल के लिए निकाल दिया गया था। बाकी हमारी मम्मियों का क्रेज इस साड़ी से ज्यादा इस साड़ी के ब्लाउज के लिए था। याद है वो बैकलेस खिड़की ब्लाउज, आज भी अल्टीमेट क्रेज है उसका। तभी मैं कहती हूँ बड़े पर्दे पे जो आप फिल्म देखने चाहते हैं ना उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां होती है बाबू मोशाय, और वो कहानियां मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो एक काम करो, अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताओ, आई विल डू द होमवर्क फॉर यू। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Milchi. Iskabala, puskabala, sakabala. Rambala. Murga, murga. La virbala, murga. Milchi, murga.
1: Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं. तो
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं.
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए. कम से कम मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने दो पैसे भी निकाले.
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए.
1: सबको लगा दूंगा लाइन में.
2: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं. सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: खट खट.
6: Who that?
5: जस्सी.
6: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
5: जस्सी who has come आंटी जी.
6: खट खट. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
7: मेरी फेवरेट चीज तो बिल्कुल लास्ट में आती है यार.
8: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं.
7: मिर्ची पे ट्यून इन हूं आप. मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज डिसाइड कर रही हूं दुनिया में पाए जाने वाले दो प्रजाति के खाना खाने वाले लोग. सो फर्स्ट आर द पीपल जो अगर अपना प्लेटर तैयार करते हैं खाने का तो उसमें उनकी जो फेवरेट चीज होती है ना उसको सबसे पहले खा के खत्म करते हैं. लेकिन जो दूसरी प्रजाति है, ओहो भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है इनको और काफी सारा पेशेंस दे के भेजा है. क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने प्लेट में सारी चीजें धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म करते हैं खा के इस उम्मीद में कि यार बाकी चीजें बकवास लगी तो लगी, लास्ट में जो मेरे मुंह में जाएगा वो तो मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचाएगा. इफ यू नो व्हाट आई मीन. वैसे इन दूसरे कैटेगरी वालों के बारे में इतने अच्छे से मुझे इसलिए बताया है बिकॉज आई एम दैट पर्सन यार. आप अपनी प्रजाति बताने के लिए मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे जरूर कनेक्ट करना. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. इट्स हॉट.

Mix. Mircii. अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।

0: यार उस चीज की एक्साइटमेंट अलग ही मजा देती थी।
1: 90 ml विद श्रुति।
0: यार 90s में गाने सुनना सिर्फ गाने सुनना नहीं होता था, उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती थी। याद है आपको, अपने पसंद के गाने एक साथ चाहिए होते थे तो बनाई अपनी मिक्स टेप, रेडियो के पास बैठकर अपनी फेवरेट गाने का इंतजार करना और जैसे ही गाना आए फट से रिकॉर्ड दबा देना, और अगर आरजे ने बीच में बोल दिया तो बस पूरा गाना खराब। फिर आती थी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, गानों का सही क्रम बनाना। भाई साहब, कौन सा गाना पहले, कौन सा उसके बाद, और कैसेट्स के कवर पर पूरे गाने की लिस्ट अपनी हैंडराइटिंग में लिखना। और अगर वो कैसेट किसी खास इंसान के लिए बनाई हो तब तो वो सिर्फ गाने नहीं होते थे, वो आपकी फीलिंग्स का एक छोटा सा तोहफा होता था। और आज देखो, हम एक क्लिक में हजारों गाने जमा कर लेते हैं, बट वो जो 90s में 10-12 पसंदीदा गानों का एक कैसेट होता था ना, वो आपकी पूरी दुनिया होती थी। तो बताओ आपके ऐसे कैसेट में कौन से वो फेवरेट गाने थे जो आपने चुन चुन के डाले थे। मिर्ची श्रुति के नाम से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके हम वो सारी बातें वहां कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑन।

0: Mirchi.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
0: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: टडा, आओ मिलके आपके अंदर के फिल्मी डिटेक्टिव को जगाते हैं। सो दिस इज द न्यू गेम जो मेरे शो पे शुरू किया है मैंने। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स देती हूँ जिसको सुन के समझ के आपको मूवी का नाम गेस करना होता है। एंड द ड्रिल दैट यू ऑलरेडी नो इज दैट आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके ये गेम खेलती हूँ। तो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है इस गेम के लिए नैना। आर यू रेडी?
1: हाँ हाँ, मैं खेलना चाहूंगी।
0: क्या बात है, तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रॉम्प्ट, गन्ने के खेत, ट्रेन जर्नी। बहुत बढ़िया। थ्री फ्रेंड्स, स्पेन जर्नी, पिंक फोन,
1: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: क्या बात है। गेम शो, जैकपॉट, स्लम, डेस्टिनी।
1: स्लमडॉग मिलियनेयर।
0: बहुत बढ़िया। बिहार, गैंगस्टर, फादर्स रिवेंज, कोल माफिया,
1: गैंगस्टर फतेहपुर।
0: क्या बात है लड़की। चांदनी चौक, काला बंदर, गेंदा फूल,
1: दिल्ली सिक्स।
0: वाह वाह वाह। कोर्टरूम ड्रामा, फॉल्स केस, कंसेंट,
1: पिंक।
0: स्ट्रेंज आइलैंड, जॉम्बी, पार्टी, केओस,
1: गो गोवा गोवन।
0: क्या बात है, एकदम फिल्मची है लड़की। कॉलेज, फ्रेंडशिप, लव ट्रायंगल, कंपटीशन,
1: इश्क वाला, सॉरी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर।
0: हाँ, इश्क वाला लव। बट यस, बहुत बहुत मस्त खेला है यार।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए इसी बात पे आपको बनाते हैं आज की फिल्मी डिटेक्टिव। वेल, अगर आपके अंदर का डिटेक्टिव भी जाग रहा है इस गेम को सुन के, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, ये गेम वापस आएगा कल ना, राइट हियर ऑन मिर्ची। यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
4: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
5: पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
6: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: भट्ट,
8: अरे भट्ट हूँ।
7: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
8: खट खट हू दैट।
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: वारू वारू गाने की कुछ अलग ही फीलिंग है यार। और ये सुनाया किसने? लेकिन आज बड़े दिनों के बाद ऐसी फीलिंग आई है कि मौसम भी हमें कुछ अलग सुनाने जा रहा है। मतलब फीलिंग उतनी गर्मी की नहीं थी जितना पिछले दिनों थी, यानी कि मौसम अब वो करवट ले रहा है जिसका हमें इंतजार था। विंटर्स की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये तो फीलिंग एहसास अब हो रहा है। फिलहाल अगले 4 घंटे क्या क्या हो रहा है कतर में, ये सब कुछ बताएगा मस्त फॉलो गौरव, जिसमें सबसे पहली खास बात ये करेंगे कि UFC फाइट नाइट अपने कतर में होने जा रही है। यानी कि अगर आप लड़ाकों भिड़ाकों के शौकीन हो तो ये पंचेस मुक्के एंड लात चलाइंग देखनी पड़ेगी हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें, HMC ने अपना एक स्पेशलाइज क्लिनिक खोला है। यस, ये किस लिए है? इसके लिए भी इंतजार कीजिए। साथ ही साथ किस तरह से कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि 14 अक्टूबर के पहले बारिश पॉसिबल है, एंड कतर किस तरह से डिजिटल रिफॉर्म कर रहा है, सब कुछ यही मिर्ची भरा अगले 4 घंटों में आपके कान में लगाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको उस मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट के पासेस जिताएंगे जो रैमी प्रोडक्शन इंटरनेशनल अपने कतर में लेकर आए हैं। तो ये सब कुछ अगर जीतना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो मस्त मौला गौरव के साथ अब अगले 4 घंटे हो जाओ हमारी गड्डी में सवार। शाम को बनाएंगे हम आपकी शानदार मिर्ची भर। इट्स हॉट हबीबी, मस्ना
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: डिजिटल रिफॉर्म करा, सब कुछ यही मिर्ची भरा अगले 4 घंटों में आपके कान में लगाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको उस मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट के पासेस जिताएंगे जो रैमी प्रोडक्शन इंटरनेशनल अपने कतर में लेकर आए हैं। तो ये सब कुछ अगर जीतना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो मस्त मौला गौरव के साथ अब अगले 4 घंटे हो जाओ हमारी गड्डी में सवार। शाम को बनाएंगे हम आपकी शानदार मिर्ची भर। इट्स हॉट हबीबी, मस्ना
1: शाम शानदार।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये मुझे भी भेजना
2: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
4: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products for assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
8: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
9: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
10: कैसे रुक सकता है?
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂ ਤਾਂ ਮਾਰਪੀਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆ ਹੀ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਨਾ UFC ਫਾਈਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਕਤਰ ਮੇਂ ਯੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
1: #974974 ਦ ਮੋਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਦ ਡੇ।
0: Yes, Visit Qatar ने अनाउंस कर दिया है UFC Fight Night in Doha, ये इस नवंबर होने जा रही है 21st को, एंड ये फाइट होगी नवाजो स्टर्लिंग एंड जिन प्रोशोजाका के बीच, एंड अली बिन हमद अल अतिया अरीना में ये होने वाला है। टिकट को आप जल्दी जल्दी खरीद सकते हो, उसके लिए आपको जाकर ऑनलाइन चेक करनी है। याद रखिए शाम 5 बजे डोर्स ओपन हो जाएंगे और उसके बाद आप ये फाइट देख सकते हो। एंड ऑर्गेनाइजर्स ने सारे गेस्ट को यह याद दिलाया है कि अंडर द एज ऑफ 14 के जो बच्चे हैं वो किसी एडल्ट द्वारा कंपनी किए जाने चाहिए जिनकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो। वेल, कुल मिलाकर एक ऐसी नाइट जो बहुत सारे लोगों को पसंद है। अब मुझे लगता है आप अभी तक तो टीवी पर देखते आए, लेकिन इट्स टाइम टू सी रूबरू, 1-to-1, face-to-face। चलिए जी, अगर UFC फाइट नाइट आपको पसंद है दोस्तों, तो दिस वन इवेंट इज कमिंग अप इन कतार एंड यू कैन बुक योर टिकट्स नाउ। 89.6 मिर्ची, when it's hot.
2: Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: मैं जानता हूँ कि जब पैसे पास में हो और खर्चा ना कर पा रहे हो तो क्या करो। देखिए, हम लाइफ में बहुत बार ऐसी चीजों को लेकर बैठे रहते हैं कि अरे ये हो जाए तो कल ये वाला हम कर लेंगे, सामान खरीद लेंगे। इस चक्कर में हम ना बैठे रहते हैं और हम अपने पैसों को, अपने उन मेन पावरफुल चीज को ऐसे ही फंसाए रखते हैं। भाई तो उसको फंसाओ ऐसी का जहां इन्वेस्टमेंट के रिटर्न हो और ये रिटर्न आपको गोल्ड में अच्छे मिलते हैं।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर बात करें अल फरदान एक्सचेंज जो हमारे कतर में लेकर आते हैं स्विट्जरलैंड का पैम्प, यानी कि वो सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड का बार जो आपको देता है अच्छे रिटर्न की गारंटी, वो लेना चाहते हैं तो आपको अल फरदान एक्सचेंज जाना है जो कि पैम्प के ऑथराइज डीलर है हमारे कतर में एंड एजेंट होने के नाते। इस वक्त अल फरदान एक्सचेंज में आपको पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फौचना बार मिलेगा 568 कतारी रियाल। वहीं अगर हम बात करें पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फौचना बार 2661 कतारी रियाल, पैम्प का 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चना बार 5252 कतारी रियाल, पैम्प 1 आउंस गोल्ड लेडी फॉर्चना बार 16234। और अगर बहुत पैसा है दोस्त तो इन्वेस्ट कर दो पैम्प 10 तोला गोल्ड बार में जिसका रेट है 60264 कतारी रियाल, जहां 10 तोला गोल्ड बार आपको मिल जाएगा। 89.6 मिर्ची वन पर ये बताई बातें अच्छी मस्मोल और गौरव ने। पैसे अगर है साथ में तो इन्वेस्ट करो और रिटर्न आए तो कुछ हमारे साथ शेयर करो मिर्ची थॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.
4: Yeah.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: जान समझा करो अनु मलिक। इस गाने का जितना अच्छा म्यूजिक उतना अच्छा गाए हेमा सरदेसाई के साथ। ये गाना आपको किसने सुना है? कैसा हो अगर बरसात भी अपनी थोड़ी धुन सुना दे। अक्टूबर 14 की तारीख में ये बात पॉसिबल है कि शायद रेन हो जाए। यस, आज से लेकर 14 तारीख के बीच में एक पोटेंशियल रेन कहीं ना कहीं गेस कर रहा है हमारा कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट
0: तो बस बोलो गौरव, यहाँ आपको बताना चाहेगा कि एक बारिश की उम्मीद की जा रही है। अगर सब कुछ सही हुआ तो भाई कतर में ये हो सकता है। यस, हम आपको बता दें कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि 14 अक्टूबर तक शायद थोड़ी बूंदाबांदी हो जाए क्योंकि क्लाउड्स आर गेटिंग फॉर्म्ड एंड अच्छी हवाएं भी चल रही हैं। इनफैक्ट अगले कुछ दिनों में मौसम और बेहतरीन हो जाए, हम तो खुद ही यही चाह रहे हैं। सर, सूरज चाचू ने इतना तपाया है, अब हमारे भी थोड़ा मजा लेने का मौसम आया है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
2: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
1: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: Bollywood Boldal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hi, this is Anuradha Podwal.
5: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
6: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
7: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369, an event by Rami Productions International.
8: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
9: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
10: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
11: बहुत कुछ होगा.
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

झंझूरा ठोड़की आवाज है। गाना यहाँ किसने सुनाया? जब मस्त मौला गौरव आपके साथ है तो भाई सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड मेगा कॉन्सर्ट जहां पर आ रही है अनुराधा पटवाल, विनोद राठौड़ एंड साथ में होंगे जूनियर सानू, आई मीन से कुमार सानू, जिनको हम प्यार से कहेंगे तजुबिर रहमान, ये तीनों हमारे कतर आ रहे हैं 30 अक्टूबर को। रैमी प्रोडक्शन इंटरनेशनल को लेकर आ रहा है और मस्त मौला गौरव आपको इसके लिए पासेस दे रहा है, एंड पास जीतने के लिए आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। यस, हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि नाना पाटेकर साहब जो पिछले दिनों इस सबको अलविदा कहकर चले गए 8th of October, वो अपने आखिरी सांस ली उन्होंने, इस बीच मस्त मौला गौरव बस उनसे ही रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता है। उनके एक बड़े फेमस डायरेक्टर हो गए थे और उस फेमस डायरेक्टर के साथ उन्होंने बिहार पर ढेर सारी फिल्मों का हिस्सा बनकर माहौल बनाया, लेकिन एक में बाकायदा वो मिनिस्टर बने और लोगों का माहौल जीत लिया। यस, आपको बताना यह है कि बिहार में जो पिक्चर बनी जिसके लिए उन्होंने पहली बार हाँ बोला और माहौल बना दिया, वो झा साहब की फिल्म थी, एंड प्रकाश झा जब इनको लेकर आए तो उस फिल्म में हमारे अपने अजय देवगन ने भी इतिहास रच दिया। बताइए उस फिल्म का नाम क्या था, 5000 1896, प्रकाश झा की वो फिल्म जिसमें बकायदा मंत्री बनते हैं एंड उनका साथ देते हैं अजय देवगन, फिल्म का नाम क्या था? 5000 1896 पर मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके भेजिए अपना जवाब वॉइस नोट में कि हाय गौरव मैं ये बोल रहा हूँ और इसका जवाब ये है, यानी कि वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं हम आपकी आवाज़ पूरे कतर को सुनाएं। 5000 1896 पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर बताइए कि नाना पाटेकर साहब ने प्रकाश झा की एक फिल्म की थी जिसमें उनके साथ अजय देवगन थे, बताइए इस फिल्म का नाम क्या था? मिर्ची थॉट।

0: ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
1: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: सुनना चाहे जुबिन नौटियाल की आवाज में गाना सुनाया किसने? देवी और सज्जनों, हम आपके साथ खेल रहे सवाल जवाब, जहां पर हम आपको देने वाले हैं मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट के पास अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड जूनियर सानू कुमार, सानू साहब भी आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पूछा था कि अजय देवगन नाना पाटेकर एक फिल्म का हिस्सा थे जिसमें नाना पाटेकर बाकायदा एक मिनिस्टर थे एंड अजय देवगन उनके अंडर काम करते थे। बताइए ये किस फिल्म की बात कर रहा हूँ जो प्रकाश झा ने बनाया?
1: अपहरण ये नाना पाटेकर और अजय देवगन की मूवी थी। 2006 में आई थी, प्रकाश झा की बहुत ही फेमस मूवी थी। और होएगा शायद मेरा जवाब ठीक होगा, नवीन अग्रवाल साइड रेडियो मिर्ची।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आखिरी बार जवाब लूंगा। एंड सवाल मैंने ये पूछा है कि नाना पाटेकर साहब प्रकाश झा की एक फिल्म में मिनिस्टर बनते हैं, उनके अंडर में एक काम करने वालों में अजय देवगन होते हैं। 5000196 पर आपको बताना है राजनीति और अपहरण, इनको लेकर कंफ्यूज हैं बहुत सारे लोग। आप बताइए जो मैं हिंट दे रहा हूं उसके हिसाब से क्या है। प्रकाश झा की फिल्म है, वैसे दोनों ही इनकी है, एंड अजय देवगन नाना पाटेकर एक दूसरे के साथ है, ये भी है इस दोनों ही फिल्मों में। लेकिन क्या बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें नाना पाटेकर राजनेता होते हैं और उनके अंडर में अजय देवगन काम करते हैं? 5000196 पर मस्त मॉल और आखिरी बार जवाब लेगा और अगली बार विनर्स के नाम के साथ लौटेगा, जिनको मिलेगा बॉलीवुड मेगा कॉन्सर्ट का पास। उसके लिए इंतजार कीजिए, मिर्ची सुनते रहिए। इट्स हॉट।

0: This song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
1: स्पीकिंग,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
1: करना क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रहा।
2: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात, मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: हेल्दी स्किन, ब्यूटीफुल हेयर और लास्टिंग कॉन्फिडेंस, अब एक्सपर्ट केयर के साथ
6: किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर बरवा सिटी में कंसल्ट करें डॉक्टर श्वेता बालचंद्र राव, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी,
5: बोटॉक्स एंड फिलर्स, लेजर हेयर रिडक्शन, हाइड्राफेशियल, पीआरपी, एक्ने, पिगमेंटेशन और मेलास्मा ट्रीटमेंट्स।
6: कॉल 4419-4333, किम्स हेल्थ बरवा सिटी, बुक योर कंसल्टेशन टुडे।
7: नीड टू स्पेंड मनी होम, मेक इट फास्ट, मेक इट सेफ, मेक इट अल्फर्बान एक्सचेंज,
8: योर ट्रस्टेड चॉइस फॉर सेंडिंग मनी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एंड gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alfardan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
9: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion! LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products for assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
10: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही।
11: मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
12: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
13: Powered by iPay Wallet.
14: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
15: Let's do that, iPay. in association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
16: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
17: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
18: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
19: Baladna.
18: Taste that Qatar loves.
15: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

0: Well, ये शान की आवाज में खूबसूरत गाना सुनाया किसने? मस्त मौला गौरव आपके साथ इस घंटे कॉन्टेस्ट खेल रहा है, जहां पर रैमी प्रोडक्शन इंटरनेशनल हमारे कतर में बॉलीवुड मेगा कॉन्सर्ट लेकर आ रहे हैं, और ऐसे में हमने सवाल से आपके लिए जवाब पूछा है। एंड सवाल ये किया है कि नाना पाटेकर, लेट नाना पाटेकर, जो कि इस थर्सडे दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए, उन्होंने प्रकाश झा की एक फिल्म की थी जिसमें अजय देवगन उनके अंडर काम कर रहे थे और खुद नाना पाटेकर ने एक राजनेता का रोल प्ले किया था, बताइए ये कौन सी फिल्म थी?
1: हाय गौरव भाई, कैसे हो? ये जो मूवी के बारे में आप बात कर रहे हो, वो मूवी का नाम है अपहरण।
0: ओके,
1: इट्स धीरज फ्रॉम आमटी मुंबई, रेडियो मिर्ची।
2: हेलो मस्तमौला गौरव
0: जी,
2: दिस इज शुभदा। मूवी नेम इज अपहरण और एक्ट्रेस इसमें बिपाशा बसु, मेरा फेवरेट अजय देवगन, और हाँ नाना पाटेकर भी थे और प्रकाश झा डायरेक्टेड। यस प्लीज प्लीज प्लीज कंसीडर माइन।
3: हेलो मस्तमौला गौरव भाई, गुड इवनिंग, मैं भी मस्तमौला, आप भी मस्तमौला,
0: क्या बात है।
3: जो मूवी आप डिस्क्राइब किए, जो मूवी का नाम है अपहरण, मुझे पास दे दीजिए प्लीज।
4: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ये फिल्म है अपहरण। ओके थैंक यू, बाय बाय।
0: भाई कह सकता हूँ स्टार्टिंग में लोग कंफ्यूज जरूर हुए और अपहरण के साथ साथ राजनीति के आंसर को लिख कर भेज रहे थे, यू नो वॉइस रिकॉर्ड कर भेज रहे थे, लेकिन इसका सही जवाब है मूवी अपहरण। Yes, जिसमें बकायदा नाना पाटेकर बाद में अपने गैंग में शामिल करा लेते हैं एक्सट्रोशन के लिए लोगों को, यस अजय देवगन को, एंड यही सवाल का जवाब सही जवाब है। एंड कौन जीता है टिकट, यस वो नाम लेने ही पड़ेंगे, एंड वो नाम है शुभदा एंड धीरज के। दोनों लोग लकी विनर बने हैं, शुभदा एंड धीरज, आप दोनों को मिलता है इसका बॉलीवुड मेगा कॉन्सर्ट का पास, जाइएगा एंजॉय कीजिएगा। और जो लोग नहीं जीत पाए हैं वो निराश ना हो, टिकट जाकर बुक कर सकते हो प्लेटिनम लिस्ट पर, वर्जिन पर, इसके अलावा क्यू टिकट्स एंड एस सिटी स्नूनू, सब जगह टिकट अवेलेबल है 30th of October, एंड वो महफिल शानदार होगी जहां आप 90s के नगमे गुनगुनाएंगे, गाएंगे और उन सिंगर्स के सामने साथ देंगे जिनको हमने अब तक सिर्फ रेडियो पर, टीवी पर गाते सुना है। मिर्ची इट्स हॉट,
5: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: भीगी भीगी सी, ये रात जेम्स की आवाज अलग ही है भाई।
1: मस्त मौला गौरव,
0: एक नेक आवाज जो आती है और मेरे दिल में गार्डन गार्डन कर जाती है, वो होती है वो सैलरी मैसेज वाले पिंग की आवाज। अगर बात करें तो अगर पैसे जुटा के रखे हो तो भेज लो, रेट्स अच्छे हैं। राइट नाउ आपको एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले हैं इंडियन रुपीज 26.49 रुपए। यस 26.49 INR। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.80। कैन यू इमेजिन। हाँ जी, इसके बाद जनाब पाकिस्तान रुपीज की बात करें, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.15 पाकिस्तान रुपीज मिल रहे हैं जनाब वाहिद कतरी रियाल के बदले। वहीं अगर तपाई को नेपाल रुपीज के रेट का बात करेगा दाई, इसके बाद बांधू बांग्लादेशी टका दादा बाड़ी पाटी दे 33.77 तो अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 33.77 एट अ रेट। ठीक है, तो वाले बांग्लादेश से टाका तो मस्त मोलो गौरव के साथ ये था आईपे का एक्सचेंज रेट। आईपे जो आपको एक ऐप के जरिए बहुत सारा सॉल्यूशन देते हैं, जहां पर आप अपने सारे बिल पेमेंट्स कर सकते हो, वोडाफोन माई बुक का सब्सक्रिप्शन पा सकते हो, एंड साथ ही साथ और भी ढेर सारे डील्स एंड ऑफर्स। मस्त मोलो गौरव ने बताइए, जल्दी जल्दी भेज लो घर पैसे एंड बन जाओ एक बार फिर से करोड़पति मिर्ची।

महमूद राघव चट्टा ने अरुआ कई की आवाज में गाना सुनाया किसने? आप अपने आप को बड़ा बना लें, लेकिन बड़ा वो होता है जो दूसरों के लिए सोचे और उसे भी बड़ा बनाए। एंड कतर इसी तरह अपने डिजिटल एक्सेस को ओपन कर रहा है ताकि बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कतर में और बढ़ जाए। यस, पसपोलो गौरव यहाँ आपको बताना चाहता है कि एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम कतर एंड अब्रॉड नाउ कैन अरेंज यहाँ पर बहुत सारी चीजों को, मार्केट इन्फॉर्मेशन लेकर बिजनेस डेटा, लोकेशन बेस्ड इनसाइट्स, सब कुछ मिल जाएगा कतर बिजनेस मैप प्लेटफॉर्म पर। याद रखिए, ये कतर बिजनेस मैप प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है और डिजाइन कर एक तरह से मार्केट रिसर्च में सपोर्ट करती है एंड बहुत सारे डिसीजन जो आप बिजनेस में लेना चाहते हैं उनको आसान बना रहा है। इस प्लेटफॉर्म का नाम जरूर याद रखिए कतर में अगर बिजनेस प्लान कर रहे हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कतर बिजनेस मैप प्लेटफॉर्म ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव के साथ आया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे इनसाइट्स, मार्केट के ऐसी रिपोर्ट्स जो हमारे और आपके कई सारे डिसीजंस को आसान बना सकती है, उसी को लेकर ये नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आई एम श्योर ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारे बिजनेस के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कतर में कोई बड़ा बिजनेस प्लान कर रहे हैं, जस्ट कीप इन योर माइंड कंसिडरेशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स इंडस्ट्री का ये डिजिटल इनिशिएटिव जिसका नाम है दोहा, हमारे कतर का बिजनेस मैप प्लेटफॉर्म। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है, ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है, अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।

0: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
1: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
0: हाँ जी सर।
1: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
0: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
2: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो। अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
0: कुकड़ों को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्तवाला गौरव, और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में, और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉयड इट?
7: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
8: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
9: And show Gaurav, Afreen, thank you very much.
10: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
11: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
10: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
12: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
13: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
14: Yes, Bebo.
13: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
14: Yes.
13: Catch kya hai?
14: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
13: I still can't believe it. No catch.
14: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds.
15: Our business is our business, none of your business.
16: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
17: Qatar का number one radio station.
18: 89.6
19: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: अभी भी काम करना है तो कम टू कतर। कतर अपनी पोजीशन हर दिन के साथ स्ट्रॉन्ग करा। अगर इम्पोर्टेंट वर्कप्लेस कल्चर मार्केट की बात करें तो अक्रॉस मिडिल ईस्ट कतर इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। एंड ये अनाउंस 2026 बेस्ट वर्कप्लेसेस इन मिडिल ईस्ट में कतर अपने यहाँ को आगे लेकर जा रहा है। टॉप 200 ऑर्गेनाइजेशंस ने ये माना है कि अगर बात की जाए तो यस, कतर इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। एंड बड़ी बात यह है कि कतर बेस्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस लिस्ट का हिस्सा बने, जैसे कि अल अब्दुल गानी मोटर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जुलाल वेलनेस रिसोर्ट, शिफ्ट ग्रुप, कतर पावर इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, मैग्नी प्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। एंड ये बताते हुए मुझे भी खुशी हो रही है कि यार हमारे कतर में सच में यार वर्क प्लेस का एक जबरदस्त माहौल है। एंड उसी कल्चर को जो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एस्पेक्ट है, दैट इज आप सबकी रिस्पेक्ट कीजिए एंड स्टे इन पीस। एंड उसी को आगे बढ़ा रहा है कतर का हर एक इंस्टीट्यूशन, इस पूरे वादे को आगे की तरफ लेकर बढ़ रहा है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि वाकई में जितनी पीस, जितना सुकून हमारे कतर में है शायद ही मिडिल ईस्ट के किसी और देश में होगा। और इसीलिए हम कहते हैं इट्स अ ग्रेट प्लेस टू वर्क, कीप वर्किंग, मेहनत करो और अपने बॉस से अच्छी बना के रखो, क्योंकि आखिरी में तो वही अप्रेजल करता है। मिर्ची, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हाँ जी, ऐसी धाकड़ है रफ्तार की आवाज में ये गाना किसने सुनाया?
1: मस्त मौला गौरव।
0: ये भी धाकड़ बात है कि हमारे कतर में अब आपको एक धाकड़ फाइट नाइट देखने को मिल रही है। यस, विजिट कतर ने अनाउंस कर दिया है दी UFC फाइट नाइट इन दोहा, कतर में हम देखने जा रहे हैं। यस, हम आपको बताना चाहेंगे कि कतर में 21st of November सैटरडे के दिन लाइट हैवीवेट बाउट होने वाला है एंड दिस इज बिटवीन प्रोकास्का एंड स्टर्लिंग। वेल, UFC की वो फाइट नाइट हमारे कतर में होगी जो अभी तक तो हम टीवी पे देख के चेयर करते हैं, लेकिन जब UFC फाइट नाइट खुद दोहा में आ रही नवंबर के महीने में तो दोस्तों तैयारी कर लो। अली बिन हमद अल अतिया एरिना में ये होने जा रहा है एंड कह सकते हैं एक शानदार मैच देखने को मिलने वाला है। वन नाइट वर्ल्ड क्लास मिक्स मार्शल आर्ट इवेंट होने जा रहा है अपने कतर में, आप इसके ऑनलाइन टिकट्स देख सकते हो। एंड इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि यहां जाने के लिए आपकी एज अंडर द एज ऑफ 14 में कोई ना कोई एडल्ट आपको अकंपनी करना चाहिए, 21 या उससे ज्यादा, एंड उसके अलावा अगर आप एडल्ट है यू कैन गो। एंड कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ दिस होल इवेंट इज अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स एंड ये 6 घंटे में हम अपनी लाइफ के उस बड़े सपने को पूरा होते देखेंगे जिसमें हम चाहते थे कि दो लोग मारपीट कर रहे हो और हम लोग दूर से मजे ले रहे हो। बिल्कुल मिलाकर UFC फाइट नाइट की टिकट्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, अपने कतर में होने जा रहा है नवंबर के महीने में। ये शानदार दिन होगा 21st का एंड आई एम श्योर एक ऐसी शाम जो अब तक आपने सिर्फ टीवी पे देखी अब सामने देखने की बारी आई है। दोस्त तैयार हो जाओ, 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ मिर्ची थॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

क्या आज भी वेस्ट इंडीज चेस कर लेगा 200 के ऊपर का स्कोर या इंडियन टीम कमबैक करेगी? मस्त मौला गौरव आपके साथ। इंडिया ने वनडे में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 400 के ऊपर का स्कोर चेस किया एंड हमारे शुभमन गिल ने लिखा इज इट कूल। फिर उसके बाद साई होप ने उस दिन 250 का स्कोर T20 में चेस कर दिया। फिर उन्होंने लिखा इज इट कूल। लेकिन क्या अब इस मैच में कुछ बदलने जा रहा है? वेल, फिलहाल के लिए साई होप जो पिछले मैच के धुरंधर थे वो इस वक्त आउट होकर बैक टू पवेलियन गए। इंडियन टीम ने अपनी इनिंग्स खेलकर बनाए हैं पूरे 223। अब वेस्ट इंडीज को दरकार है 224 की। क्या होता है क्या नहीं, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों, हमारी इंडियन टीम इस मैच के साथ कमबैक कर सीरीज में 2-1 की लीड लेकर आगे बढ़ सकती है। और तो और इतना ही कहना चाहूंगा, एक तरफ पाकिस्तान श्रीलंका की बात करें तो वहां भी मैच चल रहा है। 215 का स्कोर खड़ा किया है पाकिस्तान की टीम ने। श्रीलंकन टीम चेस कर रही है, फिलहाल बिल्कुल अच्छा चेस नहीं है। 9 ओवर में ही 62/4 का स्कोर है। एंड यही बताना चाहता हूं कि क्रिकेट का सीजन लगातार चल रहा है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जिसने भाई साउथ अफ्रीका के घर में जाकर उन्हें चैलेंज किया है एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस अभी परेशान तो है सर। हाँ जी, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 390 बनाए, आखिरी 4 विकेट ने कमाल की बैटिंग करी और अब साउथ अफ्रीका 284 पर ऑल आउट हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया लीड कर रहा है इस मैच में 139 क्योंकि 33/9 विकेट्स ये स्कोर है। एक तरफ बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान मैच की बात करते हैं तो बांग्लादेश इज लीडिंग बाय 329 रन इन देयर सेकेंड इनिंग्स एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो अफगानिस्तान अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी वरना ये मैच हाथ से गया। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
2: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे। That used to be the spot in my school.
3: Toilet?
2: हाँ।
3: School था, कंजर खाना खुला हुआ था।
2: तो दोनों।
1: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
4: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
7: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products par assured gift vouchers. Plus up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
8: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
9: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
10: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन। It's hot.

0: मिस्टर गगन, वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 3371033, राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो।
0: आपने नहीं किया है?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
0: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने ATM यूज किया है।
0: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे निकाले।
0: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
0: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पे क्या मेरा नाम लिखा है?
0: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता। आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए।
1: सबको लगा दूंगा लाइन में।
0: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए। बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
1: क्या
0: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
2: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी। और बैंक हमारा मिर्ची का है, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
0: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
5: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow. फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
10: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अगर आप उनमें से हैं जिन्हें लाइन में लगना पसंद नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से काम पूरा करते हैं, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैं सर। हाँ जी, क्योंकि कतर में मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ने की सोच ली है। साल 2026 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने इस साल जनवरी से अगस्त 31 तक लगभग 9 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए हैं। यह सब आपको बताना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने पिछले 8 महीनों में 9 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे किए, जिसमें 890,000 रिक्वेस्ट तो प्योरली ऑनलाइन प्रोसेस की गई हैं। अब वेबसाइट हो या फिर उनका उन ऐप, दोनों ही जगह डिजिटल सर्विसेज को बिल्कुल सीमलेस तरीके से चलाया जा रहा है। एंड एक क्लिक पर आपके लिए 300 से ज्यादा सर्विसेज वेबसाइट पर है एंड 200 से ज्यादा उन ऐप पर। अब बताइए, घर बैठे बैठे सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी के हो जाएं तो किसी को वहां जाना ही क्यों पड़े। एंड इतना ही नहीं, ग्लोबल कस्टमर सर्विस वीक के दौरान खुद इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने अपने इस कमिटमेंट को रीअफर्म किया है कि आपके लिए अब हर सर्विस और फास्ट बनेगी और स्मूथ और हैसल फ्री तरीके से पहुंच रही है। इसके लिए आपको कहीं लाइन में लगना है, बस आप उन ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर उनके वेबसाइट पर जाइए एंड आपका सारा काम डिजिटली पूरा हो जाएगा। सर, कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि अब डिजिटल ही दुनिया है और आने वाले टाइम में इसका यूज और बढ़ता जा रहा है, तो जितना हो सके आप भी टेक सेवी बन जाओ। 89.6 मिर्ची 1 इट्स ऑल
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it, kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।
1: बड़ो लोग

0: करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

फूल नहीं सर, स्कूल में तो चौक से काम चलता था। यार मतलब क्लास में शैतानी का अपना अपना तरीका होता था, लेकिन बची हुई छोटी चौक के टुकड़ों से एक दूसरे के दोस्त के सर पर मारने का एक अलग ही स्कूल का मजा था यार। वेल स्कूल डेज आर ऑलवेज स्पेशल और इसीलिए लाइफ टाइम मेमोरी बनकर रह जाता है। एक एक वाक्य, एक एक टीचर हमें आज भी याद है और यही बताता है कि क्यों है स्कूल इतना इंपॉर्टेंट। वेल स्कूल में पढ़ाई करते करते जब आप बोर हो जाए तो है ना GWM का मिर्ची रिचार्ज, जो हम कल लेकर जाने वाले हैं लोयला इंटरनेशनल स्कूल के छोटी विंग के बच्चों के साथ, एंड बहुत सारा फन मस्ती धमाल उनके लिए अवेट कर रहा है GWM मिर्ची रिचार्ज, जहां पर हम बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फन एंटरटेनमेंट का एक सेशन देते हैं। एंड कल ये सेशन होने जा रहा है लोयला इंटरनेशनल स्कूल में, जहां होंगे मिर्ची आरजेस एंड छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ होगा ढेर सारा मस्ती फन धमाल। चेकआउट करिएगा सारी स्टोरीज मिर्ची वन कतर के इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक की स्टोरीज पे, क्योंकि ना हम जो भी करते हैं हम चाहते हैं बच्चों के पापा मम्मी तक भी पहुंचे। तो पापा मम्मी बच्चों को फुल एनर्जी के साथ भेजना, कल हम बहुत मस्ती करने वाले हैं लोयला इंटरनेशनल स्कूल में। तो बस लोयला इंटरनेशनल स्कूल वो खैर वालों तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। GWM का मिर्ची रिचार्ज है बच्चों के लिए असली फन। मिर्ची इट्स हॉट।

यार मेरे पापा की आदत थी, आपके पापा की भी आदत थी क्या? क्या मतलब ना, जब वो घर लौटते थे तो रात को उनके हाथ में खाने पीने के सामान का कोई ना कोई पैकेट होता था। स्पेशली अगर बात करूं तो हमारा शहर जो है ना बनारस, वहां पे ना मलाई रबड़ी का बड़ा चलन है। रबड़ी, मलाई या फिर उसके अलावा मिठाई का बहुत शौक है लोगों को, तो लोग मीठा लेकर घर पहुंचते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर रोज रोज मीठा जाता है, और उस दुकानदार को पता होता है कि ये आएंगे और इनका यही टिपिकल है, 250 ग्राम ये पैक कर दो, 250 ग्राम ये पैक कर दो। तो मतलब एक चलन है हमारे शहर में, जहां पर आज भी जब पेरेंट्स वापस लौटते हैं ना तो अपने बच्चों के लिए मीठा या फिर रबड़ी मलाई ये सब लेकर घर जाते हैं। आपका ऐसा कोई ट्रेडिशन है तो जरूर बताइएगा 5001896 पर वॉइस नोट में या मैसेज करके बताइएगा। गौरव, हमारे वहां फलानी चीज लेकर ना पापा आते थे देर रात को। बिल्कुल मिलाकर कुछ चलन ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम आपके दिमाग में रहते हैं। और अक्सर मैं भी जब यहां से अपने घर जाता हूं, अपने बच्चे के लिए मैं भी कुछ ना कुछ लेकर जाता हूं ताकि वो एक्साइटेड रहे, उसका एक्साइटमेंट बना रहे। एंड उस दिन तो और ज्यादा इंतजार होता था जिस दिन पापा लेट होने लगता था, यार इससे पहले कि हम सो जाएं पापा जल्दी से आ जाएं, हम देख तो लें आज क्या खाने को मिलने वाला है स्पेशल। एंड जब जाड़े की रात आती थी, मतलब विंटर्स की तरफ बढ़ते थे ना, मूंगफली पट्टियां यही होता था यार, सब याद आता है। आप भी याद किया करो, अच्छा लगता है यार, पुरानी यादें बड़ी जरूरी है, इनका रिमाइंड होते रहना। 89.6 मिर्ची वन पर फिलहाल मी सिंह ठहरो भाई, लौटेंगे कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में ढेर सारा फन मस्ती धमाल लेकर। और क्या हुआ लॉयला स्कूल के बच्चों के साथ ये भी कल आप जानोगे। GWM मिर्ची रिचार्ज लॉयला स्कूल में होने जा रहा है कल। मिर्ची इट्स हॉट, ठहरो भाई अभी भी मस्त सलामा।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
2: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
1: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Dosti kai ko sulay madam. No sorry, no thank you.
5: Bhai saab, sorry and thank you. Hame dosti nahi, entertainment chahiye.
6: Tum Mirchi suno na, jahan entertainment khub milega.
7: Khub milega. Khub milega.
8: Qatar ka number one radio station.
9: 89.6
10: FM Mirchi 1. It's hot.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप गानों की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है हमारा 90s एंड 2000s का इंडी पॉप क्लासिक। हम फीचर करने वाले हैं ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। 18 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार। संजू राठौड़ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है तारे, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: इतनी कॉम्प्लेक्स बात इतने प्यार से बोल जाते हैं, हमारा ठोकरों से खास नाता है। गाने का नाम है तारे, फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। मैं और आप अपनी ओल्ड वेज में स्टक रहते हैं, देन वीव गॉट स्टॉलवर्ट्स लाइक श्रेया घोषाल हु कीप्स फाइंडिंग न्यूअर वर्जन्स ऑफ हरसेल्फ। उनका नाम सुनते ही उनकी आवाज हमारे दिमाग में आ जाती है। सच एन आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर ऑफ आर टाइम्स। बट इफ आई हैव टू पिक अ श्रेया घोषाल सॉन्ग फ्रॉम रीसेंट टाइम्स जो मेरा फेवरेट है, दैट्स दिस कोलैबोरेशन शी डिड विद एफी टिल्लो। What a cool song for Shreya to do, contemporary Punjabi pop gana, and it's one of many collaborations जो Shreya Ghoshal कर रहे हैं। She also did a Coke Studio Bharat song. I love how curious she is still about her art. And just when we know कि मैंने Shreya Ghoshal को हर तरीके के गाने में सुन लिया, she will surprise us with something. That's the reason she is such a global pop icon. For all her fans, for all the budding artists, Cat's Eye Band की Lara Raj ने recently Los Angeles में Shreya के साथ एक panel किया था, and she had a proper fangirl moment with Shreya Ghoshal. She called her the Bollywood queen. But to me, Shreya Ghoshal is just a queen. Chahe wo playback ho ya fir global pop. A countdown ka jo agle wala gana hai, it's an independent pop song by Shreya Ghoshal. Nayi Naveli entry hui hai. Shreya ki awaaz mein Anurag Mishra ki composition, Alok Ranjan and Anurag Mishra ki lyrics. Gaane ka naam hai Berry Pia. How poetic is that? It's playing right next for you on Gaana number 8. You're listening to Gaana Indie Top 10. Vandiga naam hai Kanika. Enjoy. Number 8.

0: TMD Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's hot Jimmy Acha Acha
1: Jimmy Acha Acha अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून
2: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
3: यस बेबो
2: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ
3: यस
2: कैच क्या है
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो
2: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
4: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी जा बेटा जा
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल
6: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
9: नंबर 7

0: बंजारी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है बैरन। 28 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। हर साल अक्टूबर आता है तो ये फीलिंग आती है ये 10 महीने कहाँ निकल गए। रिसेंटली मैंने एक गाना सुना एंड आई रियलाइज कि 10 साल कहाँ निकल गए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. This show is all about the hottest pop music of the week. But recently ek gaane ne mujhe ekdam surprise kar diya when I realized ki is gaane ko, listen to this song, isko 10 saal ho gaye hain. Mere yaar mera pyar hai jahan hai ye nikke nikke shots. गाने का नाम है बाकी बातें पीने बाद बाय अर्जुन कानूंगो एंड बादशाह। 10 साल, यस, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ इस गाने पर डांस कर रही थी एंड व्हेन आई रियलाइज कि हाँ इसको 10 साल हो गए, आई वाज लाइक नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बट इट इज ट्रू। 10 साल पहले अर्जुन कानूंगो अपने करियर में जो स्टार्ट कर रहे थे एंड टू गेट एन बादशाह कोलाब वाज सच अ ग्रेट डील फॉर हिम एंड इसकी स्टोरी भी बहुत फनी है। बाय 2016 बादशाह वाज बादशाह, ठीक है, एकदम रिकॉग्नाइज्ड रैपर, बट अर्जुन वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो ही वांटेड बादशाह टू कोलैबोरेट ऑन दिस सॉन्ग। अर्जुन ने ऐसे ही चांस लिया, बादशाह को ईमेल लिखा दैट मैं ये गाना कर रहा हूँ, आई वुड लव फॉर यू टू रैप ऑन इट। एक दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, दो दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तीसरे दिन सीधा अटैचमेंट में एक रैप आता है।

अच्छा ने ना कोई मीटिंग करी ना कोई स्टूडियो सेशन। उस अटैचमेंट में जो रैप का पार्ट था वही आज इस गाने में है। ये दोनों पहली बार मिले भी इस गाने के वीडियो शूट पर थे एंड ऑलमोस्ट 10 years लेटर दिस सॉन्ग इज स्टिल अ टॉप पार्टी प्लेलिस्ट फेवरेट। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। थ्रोबैक टू 2016, दिस इज बाकी बातें पीने बाद बाय अर्जुन कानुंगो एंड बादशाह ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: हर थोड़े वक्त के बाद में यही बोलती रहती हूँ कि वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है, एंड दिस सॉन्ग इज द एग्जांपल ऑफ दैट. दैट वाज अर्जुन कानोंगो बादशाह का गाना बाकी बातें पीने बाद. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज अ साई अभ्यंकर सॉन्ग, विवेक के लिरिक्स, गाने का नाम है राधी माँ, दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद मिट्टा रौर का गाना 28 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot
1: कट कट
2: अबे कौन है
1: उत्तपा
2: उत्तपा कौन
1: उत्तपा मैं दो डोसा और सांभर ऑर्डर किया था आया क्या
2: खट खट हो दैट
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
3: Number 4.

0: കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കരളിലെ പ്രിയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാൽ അറിയാം.
1: Craziest collab of 2026, Shreya Ghoshal ka gana, Arjun KDS 54, Ron ka gana featuring Shreya Ghoshal, that is Kalyani, this week on Gana number 4.
2: Gana Indie Top 10.
3: Gana Indie Top 10.
4: Kanika ka saath. On Mirchi.
1: Mirchi par, this is the Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is at RJ Kanika. It's time for what we call... हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग यू फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
5: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो.
1: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है परी हूँ मैं. 1991 में रिलीज हुआ था. सुनीता राव की आवाज, लेस्ली लुइस का म्यूजिक, राजेश जौहरी के लिरिक्स. सुनीता राव की एल्बम धुआं का था गाना. एंड आई नो बहुत लोगों को शॉक लगा होगा कि ये 1991 में आया था, पर तब से लेके अब तक इस गाने ने बहुत सारी जनरेशन की लड़कियों को ना एक अलग तरह का स्पेशल फील करवाया है. आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटी थी ये गाना बजता था और मैं सीधा शीशे के सामने भागती थी, खुद को देखती थी, थोड़ा इतराती थी, तो डांस करो, थोड़े बाल बनाओ, मतलब फुल ऑन मेन कैरेक्टर वाइब. एंड आज नवरात्रि एंड गरबा का सबसे हिट गाना है ये. परी हूँ मैं हर तरफ सुनाई देता है, गरबा नाइट, डांडिया प्लेलिस्ट, बिकॉज इट मेक्स एवरी गर्ल हैव दैट मेन कैरेक्टर मोमेंट. वो वाली फीलिंग होती है ना कि आज मैं मस्त लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है. आई एम माई ओन सेंटर. एंड आई होप ऑल ऑफ अस फील लाइक दैट एवरी टाइम. बट इस गाने को सुनते हुए तो डेफिनेटली हम ये फील करने वाले हैं. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. सुनीता राव की आवाज, लेस्ली लुइस की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है परी हूँ मैं, ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: सुनी तो रहोगी आवाज में, दैट वॉज परी हूँ मैं। बचपन नहीं, अभी भी मैं बस इतरा रही थी, खुद को देख रही थी, बाल बना रही थी, शर्मा रही थी। दिस सॉन्ग मेक्स यू फील सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सुनीता राव फॉर दिस आइकॉनिक आइकॉनिक सॉन्ग। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी गाना फ्रॉम द 90s 2000s जो आज भी आपके लिए एक आइकॉनिक गाना है, मुझसे और अशकाय के साथ आके शेयर करो। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। कृष्णा धनधनियोली वाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके बूम शाका इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 3.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot
1: Bollywood Bol Dal Bollywood Bollywood Bollywood Bol Dal
2: Only on Mirchi It's Hot
3: अर्शद वारसी, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
4: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
5: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
6: पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
7: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूं जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूं।
3: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑल
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
8: खट खट
9: कौन है
8: ईशांत
9: ईशांत कौन
8: ईशांत गदाधारी भीम ईशांत
9: खट खट हू दैट
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 मिर्ची इट्स हॉट
2: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
3: मिर्ची सुन रहे हैं आप बंदी का नाम है आरजे कनिका दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची जहां हफ्ते के टॉप दिस हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं हम आपके लिए कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जो मेरा हैंडल इज @RJKanika अपना रिपोर्ट कार्ड किसको पसंद है लेकिन दूसरों की रैंकिंग झांकने में बहुत मजा आता है गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 तक का सफर हम पूरा कर चुके हैं एंड पॉप म्यूजिक के इस हफ्ते के काउंटडाउन में बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 10 फरक का तारे स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 9 श्रेया घोषाल का बेरी पिया ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8 द हरियाणवी सेंसेशन बाय बंजारे दिस इज बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 7 साई अभ्यंकर का राधी माँ वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6 देन मिट्टर और का शीशा ऑन गाना नंबर 5
10: तेरे आगे पीछे लगे सुन दोना छोरी का हर रंग तेरे
3: अर्जुन KDS 54 रॉन एंड श्रेया घोषाल का कल्याणी ऑन गाना नंबर 4 कृष्णा एंड धंधा न्योली वाला का बूम शाका ऑन गाना नंबर 3 एंड नाउ द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द काउंटडाउन गाना नंबर 2 पर जो गाना है वो पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप कर आया है बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना उन्हीं की आवाज उन्हीं की कॉम्पोजिशन गाने का नाम है बरसात दिस वीक ऑन गाना नंबर 2 एंड उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बाय बादशाह हितेन का म्यूजिक फीचरिंग शर्वी यादव गाने का नाम है बैंगर 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बैंगर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1 दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10, Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

इस पूरी फिल्म में जया बच्चन के जितने भी शॉट थे ना, उनको बस हाफ प्रोफाइल तक रखा गया था। पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। आज जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो है मूवी चुपके चुपके। ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी, जया बच्चन थी इसमें, एंड जया बच्चन वॉज एक्चुअली प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म। तो उनकी जितने भी शॉट लिए गए ना, उनको सिर्फ हाफ तक रखा गया था, मतलब कहीं पे भी उनकी बेली को नहीं दिखाया गया है। तो आज इस फिल्म के बारे में ना ढेर सारी मिलकर के गप्पे करेंगे, इनके बहुत सारे गाने भी होंगे, ओनली विद मी श्रेया ऑन पुरानी जीन्स। तो गाने सुनकर के वापस आओ, फिर शुरू करते हैं आज की वार्तालाप। नहीं यार, वार्तालाप बड़ा पुराना वर्ड है, आज की गप्पे ये बड़ा मिलेनियल वर्ड है। तो शुरू क्या करें, बस आज की बातें आप और मैं मिलके।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहे हैं।
4: राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं पीयूष बोल रहा हूँ। राज जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
3: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
4: नहीं
3: है?
4: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
3: पूरी
4: नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
3: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
4: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
3: ये कॉपी मुझे भी भेजना।
4: राजी एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
3: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजूंगा।
4: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
3: हाँ बिल्कुल बताइए।
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: खट खट,
7: हू दैट?
6: जाहिर।
7: जाहिर, जाहिर हूँ।
6: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
7: खट खट, हू दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने में भी और इस जमाने में भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आप सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स को नेकेड आइज से देखोगे तो इट्स वेरी हार्मफुल, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे पता है इस फिल्म को रिलीज किया था, क्योंकि 1980 में सोलर एक्लिप्स हुआ था एंड गवर्नमेंट वांटेड कि हर कोई अपने घर में बैठे। अब उसके लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन होता था दूरदर्शन, और इसीलिए इस फिल्म को सूर्य ग्रहण के दौरान रिलीज किया गया था ऑन दूरदर्शन। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ मैं बात कर रही हूँ आज मूवी चुपके चुपके की। ऋषिकेश मुखर्जी ने ये फिल्म बनाई थी, जया बच्चन अमिताभ बच्चन भी थे इस फिल्म में, और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1980 में, सो दैट जब सोलर एक्लिप्स हो रहा है तो भाई लोग घर के बाहर ना निकले। तो उस जमाने की ऐसी कुछ सिंपल सिंपल यादें और बातें लेकर के इकट्ठा करके आती हूँ। यू कम राइट बैक, क्योंकि अगली बड़ी चटपटी सी बात है इसी फिल्म की। ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बच्चन साहब और जया बच्चन पीछे पड़ गई कि उनको इस फिल्म में रोल चाहिए है। ऋषिकेश दा उनके पास नहीं गए थे, वो आए थे ऋषिकेश दा के पास। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। एंड उस जमाने में ना इंडस्ट्री में सिर्फ दो दादा होते थे, एक एस डी बर्मन साहब और दूसरे ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी जिनके लिए ह्यूज हाई रिगार्ड्स होल्ड करते थे दोनों बच्चन, अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन। सो व्हेन दे हर्ड कि ऋषिकेश दा एक फिल्म बना रहे हैं चुपके चुपके, वो दोनों उनके पास गए कि हमें तो रोल चाहिए। दादा ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई फिल्म बने और उसमें हम ना हो, जैसे कि अभिमान। वेल, तो दादा ने उनको एक बात समझाई, लेकिन दोनों इस बात पे अग्री ही नहीं किए। और फिर ना दोनों ने ये फिल्म कर भी ली, जबकि इन दोनों के बहुत ही छोटे छोटे रोल्स थे। क्या समझाया था मैं अभी आपको बताऊंगी। कुछ गानों के उस पार, वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
4: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट यू नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
3: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ऋषिकेश दा ने कहा कि ये रोल तुम दोनों के लिए बहुत छोटे हैं, यू आर टू बिग स्टार्स फॉर दिस रोल, लेकिन ये दोनों माने ही नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। वेल 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा डायरेक्टेड। मूवी का नाम है चुपके चुपके। इस फिल्म में बहुत छोटा सा रोल किया है बच्चन साहब ने एंड जया बच्चन जी ने। सो ऋषिकेश दा को ये दोनों अपने फादर मानते थे और प्यार से उनको दादा कहते थे। सो जब इन दोनों को पता चला कि ऋषिकेश दा अभिमान के बाद ये फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है चुपके चुपके, और इसमें इन दोनों को नहीं लिया है, वो दोनों पहुंच गए ऋषिकेश दा के घर और उनसे कहा कि दादा हम दोनों क्यों नहीं है इसमें। तो पता चला कि रोल बहुत छोटा है और वो न्यू फेसेस चाहते थे, जैसे कि धर्मेंद्र जी को चाहते थे। तो भाई बच्चन साहब ने कहा रोल चाहे जितना छोटा हो या फिर एक कैमियो ही क्यों ना हो, वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म। फिर क्या, ऋषिकेश दा ने कहा ठीक है भाई आ जाओ। सोचो ये कितनी खूबसूरत बात है कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन किसी को इतना मानते थे कि उनकी फिल्म में छोटा सा रोल मिल जाए ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इसी फिल्म चुपके चुपके का एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

धर्म पाजी की जिद के आगे ऋषिकेश मुखर्जी की बिल्कुल नहीं चली। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। मूवी का नाम है चिपके चिपके, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। सो धर्मेंद्र जी को इस फिल्म में लीड हीरो का रोल मिला और ऋषिकेश मुखर्जी आशा पारेख को चाहते थे उनके ऑपोजिट एज द लीड हीरोइन। लेकिन फिर धर्म पाजी ने सारी कसरतें कर डाली कि भाई आशा पारेख को रिप्लेस करके शर्मिला टैगोर को लाया जाए। धर्म पाजी को लगता था कि शर्मिला टैगोर ऑलरेडी एक हिट हीरोइन थी, बड़ी सारी पिक्चर्स जो हिट थी वो कर चुकी थी, फिर चाहे वो अमर प्रेम हो, अनुपमा हो, एन इवनिंग इन पैरिस हो, सो मेनी ऑफ देम। तो फिर उन्होंने ना काफ़ी जद्दोजहद करके ऋषिकेश मुखर्जी को मना लिया। फाइनली ऋषिकेश दा ने भाई कहा चलो अपनी जिद पूरी करो, ले आओ शर्मिला को। एंड आशा पारेख जिनको वो अपना वर्ड दे चुके थे, आशा पारेख इस बात से काफ़ी नाराज़ हुई और उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने ये भी छापा था कि आशा पारेख ने आइरोनिकली धर्मेंद्र जी को ना इस बात का दोषी नहीं ठहराया, वो नाराज़ रही हमेशा के लिए ऋषिकेश मुखर्जी से। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म के सारे गप्पे मारेंगे मैं और आप मिलकर के। सो कम बैक राइट हियर, मैं हूँ श्रेया। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक और ऑफ कोर्स इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल, आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल
4: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: आ गई है
4: यही कि मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ। एक ऐसी मूवी जो उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर चुकी थी एंड पीपल लव्ड, बिकॉज ऋषिकेश दा की ना जितनी भी फिल्में होती थी उनके सिंपल प्लॉट होते थे और घरेलू जिंदगी से हमेशा रिलेट करती थी। सो इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्म पाजी, शर्मिला टैगोर। एंड इसी फिल्म का एक बड़ा प्यारा सा गाना है, सुनाती हूँ आपको, समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दिस सॉन्ग। सो ये गाना किशोरदा और रफी साहब ने एक साथ गाया, सुनना। अब हुआ ये कि इस गाने का एक स्टैंजा तो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, दोनों एक साथ गा रहे थे, बट अगले स्टैंजा के लिए ना ये हुआ कि भाई आराम से गाएंगे इसको, और उस आराम से में ही रफी साहब को देश के बाहर जाना पड़ गया। अब क्या होता, क्योंकि गाना तो दोनों एक साथ गा रहे थे, फिर क्या किशोरदा मैदान में उतरे और जो अगला स्टैंजा है वो जब आप सुनोगे ना तो किशोरदा ने सोलो ही गा करके खत्म कर दिया, निपटा दिया। यही गाना कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स। दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: और शायद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ही साल में इंडियन ऑडियंस ने इन दोनों के दो रूप देखे. 1975, the year that actually was magnificent if we talk about the history of Indian cinema. एक तरफ इन दोनों की मूवी शोले रिलीज हुई और दूसरी तरफ इनकी फिल्म रिलीज हुई कॉमेडी वाली चुपके चुपके. शोले जिसमें एक्शन ही एक्शन था, दूसरी तरफ चुपके जिसमें कॉमेडी ही कॉमेडी थी. और मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन एंड धर्मपाल जी की. ये इन दोनों की पहली फिल्म थी चुपके चुपके, जिसने पूरी तरीके से कॉमेडी से इन दोनों कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था. एंड इट इज सेड कि धर्मपाल जी एंड अमिताभ बच्चन को इतना मजा आता था. दो इन दोनों के सीन्स बहुत कम हैं एक साथ, बट दे हैड द टाइम ऑफ देयर लाइव्स व्हाइल शूटिंग फॉर दिस फिल्म. वैसे ये बात तो ऋषिकेश मुखर्जी की हर फिल्म के लिए कही जाती है, सिर्फ उनकी नहीं, यश चोपड़ा साहब की भी हर फिल्म के लिए कहा जाता था कि उनकी फिल्म के सेट्स नहीं होते थे, फैमिली पिकनिक हुआ करती थी. पुरानी जीन्स पे चुपके चुपके की ही बातें चलती रहेंगी विद मी श्रेया. सो बस कहीं भी मत जाना. कम राइट बैक.

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನೇ.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस।
4: I don't have to mouth those.
5: Sorry bro, sorry.
4: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, but I'm a big fan of Sajid Farhad. इनकी नरेशन, मतलब they just translate Rohit's vision so well in this zone, in this genre. And I wish I get to do a film someday where I have to mouth their lines.
3: तुषार कपूर, in fact, we wish कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ A E I O U. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
1: Bollywood Bol Dal
2: Bollywood Bollywood Bollywood Bol Dal Only on Mirchi It's Hot
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans Shreya ke saath Sirf Mirchi par
6: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
7: What?
8: My name is Anthony Gonsalves.
7: Gonsalves?
8: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: ली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please,
0: my name is Anthony Gonsalves.
2: How cute,
0: right?

0: गली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन?
2: नो।
1: गोल्डी? सोल्डी?
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: अच्छा सुनो, तुमको बच्चन साहब का घर जलसा, घर नहीं बंगलो, जलसा अंदर से देखना है क्या? तो फिर चलो मैं लेके चलती हूँ पुरानी जीन्स पे। हेलो हेलो, वेलकम, दिस इज मी श्रेया, और ये फिल्म है चुपके चुपके, ऋषिकेश दा ने बनाई है, और इसमें जया जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, धर्मेंद्र हैं, शर्मिला टैगोर हैं। मेन लीड में तो धर्मपा जी और शर्मिला जी थी, और छोटे से रोल में थे अमिताभ बच्चन एंड ऑफ कोर्स जया बच्चन। ओके, सो अगर आपको उनका घर, उनका बंगलो देखना है ना, तो आपको इस फिल्म का ये गाना देखना पड़ेगा, चुपके चुपके चल रही पुरवैया। एक्चुअली इस गाने के जितने भी शॉट लिए गए हैं ना, ये इसी बंगलो के अंदर लिए गए हैं। तब ये बच्चन साहब का बंगलो नहीं था, इसका नाम जलसा नहीं था, ये था एनसी सिप्पी साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी साहब का घर। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने ना कुछ दिनों के लिए ये गाना शूट करने के लिए उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था। सो इफ यू रियली वांट टू सी कि उस टाइम पे जलसा कैसा लगता था, ये वाला गाना देख लेना। मुझे तो बड़ा मजा आया देख करके। एक बड़ा सा टेरिस दिखाया है, उसमें बड़ा सा झूला है, खूब सारा ओपन ग्राउंड है आसपास। सो या, गो एंड वॉच दिस। पुरानी सीन्स पे आप श्रेया के साथ। एनसी सिप्पी साहब ने ये बंगलो दिया कब, क्यों और कैसे बच्चन साहब को, अभी बताऊंगी ये कहानी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6
1: It's hot.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस गाने की शूटिंग के दौरान ही मुझे लगता है कि बच्चन साहब ने सोच लिया था कि ये घर तो वो खरीद के रहेंगे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आपको जलसा, यस, उनका बंगलो अंदर से देखना है तो मैं शॉर्टकट बताती हूँ, ये वाला गाना देखना पड़ेगा। चुपके चुपके चल रही पुरवैया, ये जलसा के अंदर शूट हुआ है। अब पूरी कहानी बताती हूँ इस गाने की, इनफैक्ट जलसा की। सो होता ये है कि ये पूरा बंगलो जो है वो NCCP साहब का होता था, तब इसका नाम ना जलसा नहीं होता था। तो ये गाना जब शूट किया गया उसके बाद ना तभी सोच लिया था बच्चन साहब ने कि भाई वो ये बंगलो लेकर के रहेंगे। अब हुआ ये कि इसी दौरान NCCP साहब के बेटे की किडनैपिंग हो जाती है एंड तब से उनको लगता है कि भाई घर बहुत बड़ा है, बंगलो बहुत बड़ा है, ही कुडंट टेक केयर एंड घर में लोग बहुत कम है, वो हमेशा से ये घर छोड़ना चाहते थे। इसी टाइम के दौरान उन्होंने फिल्म बनाई सत्ते पे सत्ता जो कि ह्यूज हिट रही। हाँ, सो बच्चन साहब ने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, आपको ये घर बंगलो वैसे ही नहीं पसंद है और मेरी फीस बहुत ज़्यादा है, सत्ते पे सत्ता हिट भी हो गई है, तो एक काम करिए आप मुझे बंगलो दे दीजिए और जो बाकी का पैसा बचेगा मेरी फीस का वो दे देना मुझे। NCCP साहब को ठीक भी लगा, उन्होंने ये बंगलो एज फीस सत्ते पे सत्ता के हिट होने के बाद बच्चन साहब को दे दी। यही बंगलो आज जलसा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हर संडे बाहर आते हैं और अपने फैंस से मिलते हैं, हाथ वेव करते हैं, ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन जी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, ऐसी बहुत सारी गप्पे होती है मेरे पास, तो बस वापस आओ।

0: कुछ कहता।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
2: मिस्टर गगन, वेरी गुड इवनिंग। बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
3: नहीं तो।
2: आपने नहीं किया है?
3: नहीं।
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
3: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
3: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
3: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
3: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
3: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता
3: ठीक बोल रहा ना, वहीं जाके बजाऊंगा।
2: आप मुझ पे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए।
3: सबको लगा दूंगा लाइन में
2: सर। मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
3: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
3: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके

0: अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
1: लेकिन
2: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है, नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दा का ना बिल्कुल अलग तरीका होता था अपने एक्टर्स को रिपोर्टिंग लेट के लिए पनिश करने का। पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ आज बात हो रही है फिल्म चुपके चुपके की, जिसमें थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया जी एंड अमिताभ बच्चन। सो धर्मपाजी ना हमेशा लेट होते थे सेट पे, तो पता है क्लाइमैक्स अगर तुम इस फिल्म का देखोगे तो उसमें दिखाते हैं कि धर्मेंद्र जी एक वॉशरूम से निकल रहे हैं एंड ही इज एडजस्टिंग हिज पैंट्स, वो अपनी पैंट्स को ठीक कर रहे हैं। अब ये सीन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऋषिकेश दा क्रिएटिवली पनिश करना चाहते थे धर्मेंद्र जी को फॉर ऑलवेज कमिंग लेट ऑन द सेट। अब धर्मेंद्र जी जो हमेशा अपनी मैचो इमेज के लिए, गुड लुकिंग फीचर्स के लिए नोन थे, ही वॉज पॉपुलर एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस कि वो हमेशा अच्छे दिखे, सोफेस्टिकेटेड दिखे, व्हाइट शर्ट में दिखे। उनको भाई अपने डायरेक्टर की बात माननी पड़ी, ये उनके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट था कि वो अपनी पैन को ठीक ठाक करते हुए बाथरूम से निकल रहे, ये शूट लिया जाए। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
2: Mirchi Terminal Season 5 coming soon.
3: Khatkar,
4: कौन है?
3: दवे.
4: दवे कौन?
3: The way you love me. आई हाय मर जावा.
4: Khatkar, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
5: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

उस टाइम पे ना हर डायरेक्टर का एक फोटो होता था, जैसे कि यश चोपड़ा साहब जो थे ना वो फॉरेन लोकेशंस दिखाते थे, जैसे गुरुदत्त साहब जनरली डार्कर साइड ऑफ लाइफ दिखाते थे, जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी उनकी फिल्मों में तो हमेशा आम आदमी होता था और वो कोशिश करते थे कि क्लाइमैक्स तक आते आते वो अपनी ऑडियंस को ना कुछ लाइफ गिविंग लेसन दें। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। सो उस टाइम पे पता है क्या हो रहा था, धीरे धीरे इंग्लिश का एडवेंट हो रहा था एंड इंग्लिश कॉमनर्स के पास भी पहुंच रही थी। बट इस फिल्म में जब धर्मपाजी को दिखाया है कि धर्मेंद्र बोटैनिकल प्रोफेसर हैं, उनकी साइंस एकदम अव्वल दर्जे की है लेकिन इंग्लिश टूटी फूटी है, और एंड में दिखाते हैं कि भाई चाहे लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो, अगर आपको नॉलेज है तो यू आर द बेस्ट। सो इसीलिए ना ये फिल्म बहुत ही प्यारी है, बहुत हल्के फुल्के जोक्स हैं, आप बहुत रिलेट करोगे इससे। अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखो, और अगर देख लिए तो बार बार देखो। मूवी का नाम चुपके चुपके। पुरानी जीन्स पे ये किसका नाम है? मेरा यानी आपकी प्यारी श्रेया का नाम। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJ SHREYA विद लव।

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
4: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे। That used to be the spot in my school.
5: Toilet? हाँ। School था, कंजर खाना खुला हुआ था।
4: तो दोनों।
3: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

पुरानी जीन्स पे आवो श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जिन्हें एक ही बंदे पे बार बार प्यार आता है। उनके सामने कितनी भी हसीनाएं आ जाए या फिर कितने भी हैंडसम मुंडे आ जाए, उन्हें तो प्यार बस इसी एक बंदे पे बार बार आता है। अनुराधा पौडवाल एंड पंकज उदास जी की आवाज में कौन सा गाना है आप गौर फरमाइए। तब तक मैं जाती हूँ, ख्याल रखो अपना। इन केस यू वांट टू स्पीक विद मी तो वन टू वन चैट हो जाएगी ना हमारी फेसबुक या इंस्टा पे, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एस एच आर यू आई ए श्रेया विद लव। बस डीएम कर देना। गुड नाइट।

शामिल है।

जाना कभी ऐसा न।